नमस्कार, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारी सुबह की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्रशासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल

0: किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देशभक्ति वो भावना है जो हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाती है। भारत माँ की सेवा करना हर नागरिक का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। देश के लिए समर्पण और सम्मान ही सच्ची देशभक्ति कहलाती है। इन्हीं राष्ट्रप्रेम की भावनाओं को नमन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत से।

देश प्रेम से ओतप्रोत यह प्रस्तुति सचमुच मन में नई ऊर्जा और गर्व का संचार करती है। श्रोताओं, राष्ट्रभक्ति हमें अपने देश से जोड़ती है और ईश्वर भक्ति हमें अपनी आत्मा से। जब ये दोनों भाव एक साथ मिलते हैं तब जीवन में सच्चे संस्कार और सकारात्मकता का निर्माण होता है। इसी सुंदर भावना के साथ अब बढ़ते हैं प्रभु वंदना की ओर। मीराबाई कृष्ण भक्ति की महान संत और कवित्री थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके भजन आज भी लोगों के मन को भक्ति से भर देते हैं। मीराबाई प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। मीरा के मन में बस एक ही नाम था, श्री कृष्ण। उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से संसार को सच्चे समर्पण का मार्ग दिखाया। कृष्ण की मुरली की धुन में मीरा का जीवन पूरी तरह रंग गया था। मीरा की भक्ति में प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की अद्भुत झलक मिलती है। राधे कृष्ण और मीरा की भक्ति आज भी हर भक्त के हृदय को भाव विभोर कर देती है। तो सबसे पहले मीरा जी की भक्ति का स्मरण करते हुए आइए सुनते हैं ये कृष्ण भक्ति वंदना।

संत कबीरदास भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने दोहों और भजनों के माध्यम से प्रेम, भक्ति और सत्य तथा मानवता का संदेश दिया। कबीरदास जी ने जाति पाति, ऊंच नीच और आडंबरों का विरोध करते हुए लोगों को सादगी और सच्चे कर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उनकी वाणी सरल, प्रभावशाली और जनमानस को जागृत करने वाली थी। आज भी उनके दोहे और विचार समाज को सही दिशा देने का कार्य करते हैं।

माँ दुर्गा शक्ति, साहस और मातृत्व का दिव्य स्वरूप है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और ऊर्जा का संचार होता है। माँ दुर्गा अपने भक्त की हर संकट से रक्षा करती है। जय माता दी का उद्घोष मन में श्रद्धा और विश्वास भर देता है।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: हमारा मन बड़ा चंचल है, यह निरंतर उछल कूद करता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उस बंदर की तरह उछल कूद करता है जिसे शराब पिला दी हो। यह किसी के वश में नहीं रहता है। इस तरह यह शक्तिशाली मन शक्तिशाली मनुष्यों को भी भटका देता है। इसकी शक्ति से पार पाना अति कठिन है। यह स्थिति सदा से रही है। श्रीमद् भागवत गीता में महावीर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मन चंचल और प्रमथक स्वभाव वाला है, दृढ़ बलवान है, उसको वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान अति दुष्कर मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मन निसंदेह चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। वास्तव में हमारे मन में जाने कितने वर्षों का कचरा भरा है, उसको निकालना सहज नहीं है। यह कचरा निकालने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता तो है ही। महाभारत के युद्ध में राजा युधिष्ठिर विजयी होने के बाद युद्ध की भीषणता का अनुभव कर वैराग्य धारण करने के लिए कहते हैं। तब महावीर भीमसेन उनसे जो निवेदन करते हैं वह ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं कि इसलिए जैसे भीष्म और द्रोण के साथ आपका युद्ध हुआ था, उसी प्रकार अपने मन के साथ भी आपको लड़ना चाहिए। उसका समय भी अब आ गया है। इस युद्ध में न बाणों का काम है, न शत्रु का, और न ही मित्रों की सहायता का। अकेले आपको लड़ना है। मन को जीते बिना आपकी क्या दशा होगी, मैं कह नहीं सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन की शक्ति अद्भुत है। हिंदी में लोकोक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसी तरह कहा गया है, अपने मन से जानिए पराए मन की बात। संस्कृत के किसी अज्ञात कवि ने कहा है, अंतरंग और बहिरंग में अंतरंग ही अधिक बलवान होता है। इस प्रकार हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि मन सबसे शक्तिशाली है और वह हमारी सफलता असफलता प्रसन्नता अप्रसन्नता दुख और सुख का सदा साथी है। वह सदा हमारे साथ रहता है और हमें भटकाता रहता है। इस सर्वश्रेष्ठ शक्ति को काबू में करने के लिए जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है ही। अभ्यास में हम ध्यान और योग का सहारा ले सकते हैं। चरक संहिता में कहा गया है, मन का विषय विचार है, विचारों का जंजाल हमें भटकाता है। ध्यान करने से विचारों का भटकाव रुकता है। ध्यान में हमें अपनी सांस पर ध्यान लगाना होता है। सांसों पर आवागमन पर ध्यान लगाने से विचारों का संबंध टूटता है। प्रारंभ में यह अति दुष्कर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन मानने लगता है और उसका भटकाव भी कम होने लगता है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि ध्यान के माध्यम से हम मन की गतिविधियों को देख सकते हैं, एकाग्रता लाकर उसकी गतिविधियों को नियंत्रण में ला सकते हैं। मन एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, उसका हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान है। अतः मन को मारने पर विचार नहीं करना चाहिए। मन को मारना स्वयं को मारना है। वह हमारा मित्र है, उसकी व्यर्थ की भटकन को रोकना भर है। पाणी ग्रंथ संयुक्त निकाय में कहा गया है, उस पर ध्यान दीजिए। यदि मन संयत हो गया है तो सभी स्थानों से मन को हराना आवश्यक नहीं है। जहां जहां भी पाप है बस वहां वहां से मन को हटाना है।
0: ये था चिंतन। अब सुनिए खेती की बातें। आज इसमें जानकारी दी जा रही है खरीफ फसलों में खेती की तैयारी के बारे में।
2: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, खेती की बात में आज बात करांगा कि अपना किसान भाइयों खरीफ की फसल की तैयारी सारू खेत के किस प्रकार से तैयार करीने रखे। सफल खेती सारू बरसात शुरू होने का पहला खेत की गहरी जुताई करीने धूप दिखानो जरूरी हो गए है। प्रमाणित उन्नत बीज को चयन करनो और बीजो उपचार करनो भी एकासारू घणो जरूरी हो गए है। एकासारू अपना किसान भाइयों के चाहिए कि वे पहला गहरी जुताई करी लेवे और साथ ही साथ प्रमाणित उन्नत बीज को चयन करें और उसका साथ ही साथ बीज को उपचार भी करीने रखें। जल भराव से बचाव सारू उचित जल निकासी की व्यवस्था करीने रखें। मट्टी परीक्षण करी लेवे और ओका आधार पर गोबर की खाद और उर्वरक मिलावे। प्रमुख खरीफ फसल तैयारी सारू जैसे बरसात को आगमन होवे ओका साथ ही अपना किसान भाई उनके चाहिए कि वे कौन सी फसल लगानो चाहे है, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द और मूँग, इनमें से कोई से भी अपना किसान भाई खेती करी सके है, बोई सके है। अच्छी उपज सारू अपना किसान भाइयों के इन बातों को ध्यान रखना जरूरी होवे है। जैसे कि खेत के तैयारी में सबसे पहला आवे गहरी जुताई, इमें कई करनो है अपना किसान भाइयों के मट्टी पलटने वालों जो हल है ओका से खेत के एक बार गहरी जुताई करी लेनी है। जिका से कहीं होगो कि धूप में जो अपना जो घाम है ओका में हानिकारक कीट फफूंद और खरपतवार जो है नहीं वे नष्ट हो जाएगा, वे ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ पाटो लगानो, जुताई का बाद पाटो लगाइने खेत के समतल करी लेवा, जिका से बारिश को पानी हर जगह पे समान रूप से पहुंची जावे है। मतलब जब बरसात होवेगो तो असो नहीं रहेगो कि एक गड्ढो है तो ओमे पानी भरेगो बाकी दूर पानी नहीं है। ए अगर पाटो लगाई के अपन खेत के तैयार करी लेवांगा तो अपना के पानी हर जगह समान रूप से होवेगो। जल निकासी कभी घनी घनघोर बरसात हुई रही है तो उस दौरान खेत में पानी नहीं रुके, पानी नहीं भरियो जावे तो इका सारू जरूरी हुए कि मेड़ का किनारे छोटी छोटी नालियाँ बनाई लेवा, जिका से पानी उन नालियों का द्वारा बाहर निकली जावे, अपना खेत में भरियो नहीं रहे। बीज को चयन और उसको उपचार, उन्नत बीज हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र या प्रमाणित सरकार एजेंसियों द्वारा संशित संकर या उन्नत किस्म को चुनाव करीने ही लेवे। बीजो उपचार, बीज जनित रोगों से फसल के बचाने सारू बुवाई का पहला बीजों के अपन उपचारित करी लेवा। खाद ने उर्वरक को प्रबंध भी जरूरी होवे है तो जैविक खाद बुवाई का पहला खेत की तैयारी की बखत 5 से 6 टन एकड़ अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद मट्टी में अच्छी तरह से मिले डाल नाकी देवा। मट्टी की जांच, अपनी मट्टी का परीक्षण अवश्य करवावा, जिका से यह पतो चले सके कि खेत में किन पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाश की कमी है। इन्हीं बात को भी अपना किसान भाई उनके ध्यान रखना जरूरी होवे है। अगर अपन धान की नर्सरी लगे रहा तो उन्हीं बखत धान की रोपाई सारू मई का अंत या जून का पहला सप्ताह में नर्सरी मतलब लगानो जरूरी होवे, यो सबसे अच्छो समय मानो जावे है। मात्रा में अगर अपन ध्यान दा तो मोटा धान और हाइब्रिड किस्म का लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, जबकि बासमती किस्म सारू 3 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ अच्छो रेवे है। तो इन्हीं तरह से अपना किसान भाइयों खेत की तैयारी करी ने अपने जो फसल है ओके अच्छी तरह से ली सके हैं। पर बरसात शुरू होने का पहला अपना किसान भाइयों के चाहिए कि वे ये सब काम अपनों पहला ही निपटे लेवे, क्योंकि बरसात अगर शुरू हुई गई है तो ओका पहला अपना खे बीज की तैयारी बीज और खेत की तैयारी करी ने राखनो घणो जरूरी। बीज उपचारित रहेगो तो अपना किसान भाई उनके बीज नाखना में परेशानी नहीं आवेगी। तो आज अपना किसान भाइयों से इतना ही कहना थो। किसान भाइयों राम राम।
0: ये थी खेती की बातें। इसमें आज आपने जानकारी प्राप्त की खरीफ फसलों में खेत की तैयारी के बारे में। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

ये था श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे रविंद्र साठे, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। कालूराम बामनिया के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे और शाम 6:45 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सुभाष देशपांडे और साथियों का वायलिन वादन, राग होगा देवगिरी बिलावल। बाबुल सुप्रियो के स्वर में सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 बजे। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:05 पर। इसमें श्रोता फोन करके अपनी पसंद के गीत सुन सकेंगे। सुबह 11:00 बजे से 3:00 बजे तक के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी भोपाल से, जो इस प्रकार हैं। 11:00 बजे होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, 12:30 बजे संग्रहालय से, 1:00 बजे होगा महिला कार्यक्रम, इसमें योजना क्रम के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी प्रतिभा किरण योजना के बारे में। मेरी उड़ान क्रम में मेडिकल स्टोर संचालिका अर्पणा से आराधना की बातचीत सुनवाई जाएगी। रूपलावण्य क्रम में बताए जाएंगे मेकअप के छोटे छोटे राज। फूड जोन के अंतर्गत बताएंगे मैंगो श्रीखंड बनाने की विधि, साथ ही होगी काम की बातें कि अज्ञात विज्ञापनों से रहें सावधान। 1:30 पर होगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 12:00 बजे दिन में 2:00 बजे और 2:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम की सभा शुरू होगी 5:00 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ। इसमें आज का क्रम है हमारे शहर, जिसमें जानकारी दी जाएगी कटनी के बारे में। 5:45 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 6:00 बजे प्रसारित करेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर होगा किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें आज सुनिएगा डॉक्टर धनंजय कुमार, पूर्व चेयरमैन ग्रामीण बैंक से कृषि उत्पादन के लिए बैंकों का योगदान विषय पर बातचीत। इसी के साथ सुनवाएंगे डॉक्टर BU दुपारे की वार्ता, अलनीनो की स्थिति में सोयाबीन फसल की खेती में सावधानियां। उर्दू कार्यक्रम कहकशां रिले किया जाएगा भोपाल से 9:30 बजे। 10:00 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मनभावन और शास्त्रीय संगीत में सुभाष देशपांडे और साथियों द्वारा वायलिन पर बजाया राग।

0: जय जयवंती सुनवाया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण। अब सुनिए हिंदी में समाचार, संस्कृत में समाचार, दिल्ली
1: आकाशवाणी। संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपति भवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः सीईपीए इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
4: I am confident that this comprehensive agreement।
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: Of our shared future।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रवर्यः नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य द्वादश वर्षाणां सेवायाः विषये संघटनात्मक विस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
3: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन, और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने कल कहा कि प्रदेश केन, बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनी सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में

ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। नौतपा का आज नौवां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2026 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि 2 खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स अम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ, छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती जादौन का नमस्कार। श्रोताओं, आज 2 जून है। 2 जून यानी भारतीय सिनेमा के, बल्कि कहना चाहिए हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की पुण्यतिथि। राज कपूर, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का परचम लहराया। नीली आंखों वाले भारतीय सिनेमा के असली और पहले शोमैन राज कपूर साहब के कुछ गीत आज हम आपको सुनवाने वाले हैं। और उनकी फिल्में तो वैसे भी जानी जाती थी अपने मधुर संगीत के लिए, तो उनकी फिल्मों के जो गीत हैं वो सदाबहार नगमों की तरह आज भी गूंजते रहते हैं और आगे भी गूंजते रहेंगे। तो चलिए, आज ऐसे ही कुछ मधुर जादुई गीत हम सुनने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं उस गीत से जो पूरी दुनिया में गूंजा और जिसने रूस के सभी वासियों को अपना चहेता बना लिया।

श्रोताओं, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा मुकेश की आवाज़ में ये जो गीत था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय था। इस गीत को भारत से बाहर सोवियत संघ, चीन, मध्य पूर्व में बहुत ज़्यादा सुना गया, पसंद किया गया और इतना कि ये राज कपूर की पहचान बन गया। बीबीसी द्वारा किए गए 2013 में किए गए एक पोल के अनुसार इस गीत को सर्वकालिक और दूसरा सबसे महान बॉलीवुड गीत माना जाता है। और इसमें जो किरदार था राज कपूर का, वो चार्ली चैपलिन द ट्रैम्प में जो उनका किरदार था उससे प्रेरित था। और ये इतना प्रभावशाली था कि कई अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को तो लगा कि ये असल में राज कपूर की ही कहानी है। लीजिए, अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत श्री 420 फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों ने। एक बार फिर गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

राज कपूर की फिल्मों का जो संगीत था वो हमेशा नायाब रहा, और कहा जाता है उन्हें खुद संगीत की बहुत समझ थी और वो हर तरह का वाद्य यंत्र बजा सकते थे, और इसीलिए वो खुद संगीत पर खुद बैठ कर के काम करते थे और खुद पसंद करते थे कि कौन से गीत उन्हें चाहिए, किस तरह की धुन होनी चाहिए। और गीतकार और संगीतकार भी उनकी पसंद के थे जो कि उनकी टीम बन चुके थे। शैलेंद्र उनके पसंदीदा गीतकार रहे हैं, तो अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके गीतकार भी शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है चोरी चोरी। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: दिल ही तो है अगला फिल्म, इस अगला गीत जो है वो इस फिल्म से हमने लिया है। आवाज़ है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत रोशन का।

श्रोताओं, इस गीत में मुकेश का साथ दिया था सुमन कल्याणपुर ने। एक हिंदी फिल्मी गीतों का जो सुनहरा दौर था 60 के दशक का, जिसके खूबसूरत सदाबहार गीत हम आज भी सुनते हैं, एक एक करके उस दौर के जो फनकार थे, जो गायक और गायिकाएं थीं, वो एक एक करके इस दुनिया से फना हो गए। हाल ही में हमने आशा भोसले जी को खोया और अभी परसों ही यानी 31 मई को सुमन कल्याणपुर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी फिल्म का गीत जो अभी हमने सुना और लगभग इसी तर्ज पर, इसी मुखड़े की जो तर्ज थी उसी तर्ज पर इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत है जो मैं आपको सुनवाना चाहूँगी और इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है।

दिल ही तो है फिल्म का ये गीत था, साहिल लुधियानवी का लिखा और रोशन का संगीत था। लीजिए श्रोताओ, अब आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर की ही एक फिल्म का गीत जिसका नाम है संगम। हसर जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। इस फिल्म में राज कपूर के साथ राजकुमार थे और ये गीत उन पर फिल्माया गया है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोता, जब भी हम राज कपूर साहब की फिल्मों की बात करते हैं, उन पर फिल्माई गीतों की बात करते हैं, तो हमारे जहन में अपने आप एक नाम आ जाता है और वो है महान गायक मुकेश जी का। राज कपूर साहब हमेशा कहते थे कि मुकेश मेरी आत्मा है, मैं तो सिर्फ शरीर हूँ जो पर्दे पर दिखता है। जब मुकेश गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद गा रहा हूँ। लीजिए सुनिए अनाड़ी फिल्म का ये प्रसिद्ध गीत जो मुकेश ने गाया है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, जिस उम्र में युवा या तो नौकरी ढूंढते रहते हैं या कई बार सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, उस उम्र में यानी 24 साल की उम्र में राज कपूर ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियोज खड़ा कर दिया था और इसी में बनी थी फिल्म मेरा नाम जोकर, जो उनके दिल के बहुत करीब थी। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर शुरुआत में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही। हालांकि आज इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन मास्टरपीस फिल्मों में गिना जाता है। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं इसी फिल्म के गीत से, जो जिंदगी का फलसफा अपने में समेटे हुए है।

श्रोताओं, आज राज कपूर साहब की फिल्मों के गीतों के जरिए हमने कुछ पल उनकी याद में बिताए। अब कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हो रहा है। इजाजत दीजिए आरती को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार प्रभात।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमा भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
5: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
3: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
6: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
3: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि यह घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।

0: टीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
3: नमस्कार, प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम।

0: विविधा।
1: आज के इस अंक में कवियत्री की निजी अनुभूतियों का काव्यात्मक दस्तावेज हम आपको सुनवाएंगे, जो अब एक बिखरे सुमन का एकत्रीकरण है। सविता त्रिवेदी रेणु की सृजन धर्मिता को पहली बार उजागर किया है एक कविता संग्रह के रूप में। तो पहले उनके व्यक्तित्व का परिचय हम प्रस्तुत करते हैं।
2: अवतरण दिवस 11 नवंबर 1939, दीपावली का दिन है पाया। सविता ने देखो जग में आकर, सविता का ही प्रकाश फैलाया। लक्ष्मी अन्नपूर्णा सरस्वती का संगम है जिसके व्यक्तित्व ने पाया। सुख दुख में संभाव रख, सुख दुख में संभाव रख, निज सह पर को भी सहज अपनाया, निज सह पर को भी सहज अपनाया। स्वांतः सुखाय भाव से काव्य सृजन कर, स्वांतः सुखाय भाव से काव्य सृजन कर, कवि कुल पूर्वजों का मान बढ़ाया। आज भाव उठ रहे हृदय में तो बोल सकूं तुम्हें मैं माँ, आज भाव उठ रहे हृदय में तो बोल सकूं तुम्हें मैं माँ। देखो अंतर में समेटी कितनी ग्रंथियां खोल सकूं माँ, मोह पाश में बंध कर जैसे, मोह पाश में बंध कर जैसे सवार हुई उड़ुप में मैं, मोह पाश में बंध कर जैसे सवार हुई उड़ुप में मैं, उड़ुप छोटी नाव तो सवार हुई उड़ुप में मैं, अल्पमति से पता नहीं कितना वर्णन कर पाऊं माँ, अल्पमति से पता नहीं कितना वर्णन कर पाऊं माँ। बिखरे सुमन तुम्हारे पाकर, बिखरे सुमन तुम्हारे पाकर हुई प्रफुल्लित वाणी आज, बिखरे सुमन तुम्हारे पाकर हुई प्रफुल्लित वाणी आज। अर्चना के सुमन हम भी आज चढ़ा दें चरणों में माँ, अर्चना के यह सुमन हम भी आज चढ़ा दें चरणों में माँ।
1: और आइए अब सुने सविता त्रिवेदी रेणु से उनके बिखरे सुमन की काव्यात्मक कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: न यश की कामना मुझको, नहीं तारीफ मुझको चाहिए, न तालियों की गड़गड़ाहट न शोर मुझको चाहिए, आपकी आशीष और शुभकामनाएं चाहिए, दो शब्द कहने के लिए मुझको इजाजत चाहिए। आंसुओं से भींगी है, रो पड़ूं तो आंसुओं का मोल क्या, मुझको मिले तो मधुमेह बोल क्या, आंसुओं से भींगी है मेरी कथा, अव्यक्त भोली बावली मेरी व्यथा। गर जलो तो इस तरह से जिस तरह एक दीप जलता, दावाग्नि से तुम मत जलो, जल कर्ण औरों को जलाओ, गर जलाना है तो दुर्गुण को जलाओ। मुखर हो तो इस तरह से जो बीन से मृदु स्वर उभरता, संगठित होना चुचाहो इस तरह से जो शब्द शब्द मिलकर मधुरतम गीत बनता। मुखर हो तो इस तरह से जो बीन से मृदु स्वर उभरता, संगठित होना चुचाहो इस तरह से जो शब्द शब्द मिलकर मधुरतम गीत बनता। घर झुको तो विनय से तुम इस तरह से जिस तरह फल भार लेकर विटव झुकता, जागना चाहो तो जागो इस तरह से जो प्रखर रवि रश्मियों से सृष्टि में आलोक भरता। देख कर उत्कर्ष औरों कान अपना जी जलाओ, घूंट पी कड़वे जहर के अन्य को अमृत पिलाओ। तुम मिलो सबसे सदा उत्साह से भर, हर नया प्रातः प्रतिदिन जो सृष्टि का अभिसार करता, तुम जलो तो इस तरह से जिस तरह एक दीप जलता। बरस ना चाहो तो बरसो स्वाति घन से, चातकों की तृषा को जो की हरता, बन घटा घनघोर छाओ बादलों पर, घुमड़ करके जो मयूर मन मोद भरता। क्रोध ईर्षा के उफनते, क्रोध ईर्षा के उफनते सिंधु मत उर में बसाओ, हाहाकार करते प्रलय गर्जन में कहीं तुम खोन जाओ। स्नेह सलीला से बहुनित इस तरह से नीर जिसका शश्य श्यामल धरा को है बनाता। मैदिनी से क्षमा उर्मे सदा अपने बसाओ, हे शिव अशिव सब क्रोध में जिसकी समाता। कटु कहो मत तुम की ऐसा, कटु कहो मत तुम की ऐसा जो हृदय में शूल गड़ता, बोल हो मृदु बोल ऐसे जो लता से पुष्प झड़ता। व्यर्थ बनकर तुम उपल रोकोन पथ चलते पथिक का, तुम हिमालय से बनो जिसके हृदय में स्नेह बल। स्वर्ण बनने की तो आकांक्षा कभी भी पी करो मत, पारस बनो स्पर्श से जो लोह को भी स्वर्ण करता। गगन चुम्बी महल बनने की तो इच्छा मत करो तुम, नींव का पत्थर बनो जो भवन का भार सहता। तुम जलो तो इस तरह से जिस तरह एक दीप जल। दूसरी एक कविता है, बूंद को छोटी न समझो, बूंद को छोटी न समझो, बूंद की महिमा घनी है, एक ही तो बूंद सीपी में ढली मोती बनी है। बूंद को छोटी न समझो, बूंद की महिमा घनी है। ओस बिंदु जब प्रभात में बिखर बिखर गई, धरा के अंग अंग तब नया श्रृंगार पा गए। बूंद बूंद बूंद का समूह बन घन घुमड़ घुमड़ उठा, बूंद बूंद मिल नदी बनी समुद्र बन गया। एक स्वाति बूंद चातक के लिए जीवन बनी है, बूंद को छोटी न समझो, बूंद की महिमा घनी है। श्वेत बिंदु जब बही भूषश श्यामला हुई, मिल रक्त के प्रवाह में वह सदा सदा बही। बूंद एक रक्त की गिरी तो क्रांति हो गई, मसी बूंद से ही लेखनी पुराण ग्रंथ लिख गई। एक ही मधु बूंद जीवन का सुखद उपहार होती, एक ही विष बूंद तो मृत्यु का कारण बनी है। बूंद को छोटी न समझो, बूंद की महिमा घनी है। वे रुकी रहती नयन में, वे रुकी रहती नयन में, हे लिए वे प्रीत गागर उठमे मचलता ही रहा हो। वेदना का बृहद सागर यह अनंत पीड़ा न कोई भी समझ पाया कहीं सा, हृदय के आगार में बसता रहा जाने कहा था। वे छलक आई नयन में, वे छलक आई नयन में, ढुल कपोलों पर गई है। एक ही तो बूंद सारा भेद मन का कह गई है, बूंद को छोटी न समझो, बूंद की महिमा घनी। छंदों में बांध तुम्हें अधर पर बिठा लिया, द्रगों के द्वार से हृदय में उतार लिया, मानस के मंदिर से जा सको तो जाओ देव, श्रद्धा का सिंहासन मैंने तो बिछा दिया। पल भर अगर नयन से हट जाओ प्राण मेरे, पल भर अगर नयन से हट जाओ प्राण मेरे, मैं पलक बंद कर लूं वा विश्राम लूं थी तेरे। पर तुम न जा सकोगे जन्मों से साथ मेरे, पा ही लोगे तुम यूं इस प्राण में बसेरे। पीड़ा तुम्ही ने दी है प्यार भी इसी से, अनुराग है इसी से, अधिकार है इसी से। ध्यान ज्ञान निर्वाण मुझको नहीं सुहाता, जन्म जन्म तक हो मेरा तुम्हें से नाता। मैं बार बार जन्मू, मैं बार बार जन्मू, मरकर तुम्ही में लय हूँ, मरकर नहीं मरू मैं, तेरे प्राण में अमर हूँ। संसार जीत लूं ये लालसा नहीं है, कीर्ति ध्वजा फेरे ये कामना नहीं है। मैं जीत लूं तुझे और तुझसे ही हार जाऊं, ना बदनाम नाम तेरा ये प्रार्थना यही है। मैं ज्योति बन जलूं तो आलोक तुम्हारा है, मैं ज्योति बन जलूं तो आलोक तुम्हारा है, मैं अश्रु बन ढलूं तो ये दर्द तुम्हारा है। हमारा और तुम्हारा ये व्यर्थ बात केवल, प्राण सच कहूं तो ये प्राण तुम्हारा है। क्या लिया है मैंने तुमने ही क्या दिया है, विस्तार बात का है विवाद व्यर्थ का है। मैं मांग कर अकिंचन क्यों भला बनूंगी, जब रूप तेरा मेरा भिन्न ही नहीं। छंदों में बांध तुम्हें अधर पर बिठा लिया, द्रगों के द्वार से हृदय में उतार लिया, मानस के मंदिर से जा सको तो जाओ देव, श्रद्धा का सिंहासन मैंने तो बिछा दिया। पल भर अगर नयन से हट जाओ प्राण मेरे, पल भर अगर नयन से हट जाओ प्राण मेरे, मैं पलक बंद कर लूं वा विश्राम लूं थी तेरे। पर तुम न जा सकोगे जन्मों से साथ मेरे, पाए ही लोगे तुम यूं इस प्राण में बसेरे। पीड़ा तुम्हें ने दी है, प्यार भी इसी से

अनुराग है इसी से, अधिकार है इसी से, ध्यान ज्ञान निर्वाण मुझको नहीं सुहाता, जन्म जन्म तक हो मेरा तुम्हें से नाता। मैं बार बार जन्मू मरकर तुम्हें में लय हूँ, मरकर नहीं मरू मैं तेरे प्राण में अमर हूँ। संसार जीत लूँ ये लालसा नहीं है, कीर्ति ध्वजा फेरे ये कामना नहीं है। मैं जीत लूँ तुझे और तुझसे ही हार जाऊँ, ना बदनाम नाम तेरा ये प्रार्थना यही है। मैं ज्योति बन जलूँ तो आलोक तुम्हारा है, मैं ज्योति बन जलूँ तो आलोक तुम्हारा है, मैं अश्व बन ढलूँ तो यह दर्द तुम्हारा है। हमारा और तुम्हारा ये व्यर्थ बात केवल, प्राण सच कहूँ तो ये प्राण तुम्हारा है। क्या लिया है मैंने तुमने ही क्या दिया है, विस्तार बात का है विवाद व्यर्थ का है। मैं मांग कर अकिंचन क्यों भला बनूंगी, जब रूप तेरा मेरा भिन्न ही नहीं। ऐसी है एक रचना। तुम अव्यक्त चिरंतन शाश्वत मैं छलना भर हूँ जीवन की, तुम यथार्थ हो शिव सुंदर हो, मैं भ्रांति हूँ केवल मन की। तुम उतंग गिरी शंग शिखर हो, मैं कणिका केवल पदरज की। तुम विशाल अति विश्व व्याप्त हो, मैं कृति विकृत केवल जग। सूर्य चंद्र तारे तुम सब हो, मैं ज्योति हूँ केवल लोकी। तुम आत्मा हो सत्य निरंतर, मैं कारा हूँ केवल तन की। तुम में मुझ में अंतर इतना जितना अवनि और अंबर में, इतना अंतर तुम में मुझ में जितना सागर और झरने में। फिर भी क्या अधिकार न मेरा तुम पर भी लग मात्र न होगा, इस अकिंचन मम जीवन का तुम पर थोड़ा भार न होगा। तुम समर्थ इसलिए न मैंने तुमसे कोई भीख है चाही, मांगा नहीं अधिक कुछ तुमसे जीवन की अभिलाष न चाही। मध्य भवन में पड़ी तरणी है, खेदो तो उपकार न होगा, मेरा भी अधिकार है तुम पर पार करो आभार न होगा। इस समय के देखते हुए लिखी गई ये हवा विषदंश सी चुभने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। रुख बदल दो इन हवाओं का जरा, रोक दो इनकी भक्ति चाल को, किस तरह ये आंधियां चलने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। आज नदियों का ये पावन नीर भी नालियों के नीर सा लगने लगा, संदेह होता यह हमारा देश है, पुण्य पावन भूमि भारत देश है। हो गया कितना पतन इस देश का कि माँ बहन बेटी नजर आती नहीं, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। फूल भी जितने खिले हैं बाग में, गंध इनमें है कोई आती नहीं। दीप कितने जल रहे फिर भी मगर ज्योति मुझको एक भी भाती नहीं। लो रक्त के आंसू धरा रोने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगे। कौन है अपना पराया जानना, आज तो मुश्किल हुआ ये मानना। भावना कितनी विषैली हो गई, सर्प बन आस्तीन में पलने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। एक दूजे को लगे हैं काटने, सिंह भी भूमि लगे हैं चाटने। शत्रु सेन भय की कोई बात है, परछाइयां खुद की मगर डसने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। आज जलना दीप पर भूला शलभ, आज मडराता न फूलों पर भंवर। वीर मरना देश पर भूले सभी, या की जननी बांझ ही होने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। आज शश्वत नयन प्राची में लगे, हो उदय नव सूर्य तम को मेटने। फिर भुजा भर भेंट होगी भरत से, और अवतरित हो राम कोई देश में। आज केवल एक प्राणों में जगी, यह हवा विषदंश सी चुभने लगी। गर्व करते थे कि जिन पर हम कभी, लाज उन पर आज भी आने लगी। नाम श्रद्धा का दिया था कभी, घृणा बनकर आज मडराने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। विश्व जैसर शब्द चलने लगे, प्राण चातक हैं तभी मरने लगे। पूर्व चातक के संध्या आने लगी, ये हवा विषदंश सी चुभने लगी। इसी तरह से दूसरी है,
देव बोलो किस मृतिका से तुमने गड़े थे वे खिलौने, जो स्वयं पर तूफान से खेलते थे, फांसियों पर झूलते थे, न बांध पाई लोह की जंजीर उनको, नरसिंह ऐसे शत्रुओं पर टूटते थे। मृत्यु का भयभीत उनको था सताता, मातृभूके हेतु सब कुछ त्यागते थे, बंधनों से मुक्त माँ को हम करेंगे, देखते थे आँख में सपने सलोने, देव बोलो किस मृतिका से तुमने बनाए वे खिलौने। क्या हुआ, क्या हुए हो वृद्ध इतने कि उंगलियों में बल नहीं है, क्या हुई स्मृति भी क्षीण तुम्हारी, छोड़ क्यों तुमने दिया निर्माण करना, मूर्तियां फौलाद की अब है बनाना, कर लिए स्वीकार हंस करके जिन्होंने शूल के दुस्तर बिछोने, देव बोलो किस मृतिका से तुमने गड़े थे वे खिलौने। हो गए क्यों रंग फीके, तूलिका क्यों कांपती है, चित्र तुम्हारे ही बनाए बदरंग कैसे हो गए हैं, क्या तुम्हारी कल्पना के हो गए हैं पंख बोने, हो गई है बांझ क्या वीर प्रसुभु, जन्निया क्या शक्ति का सामर्थ्य अपना खो चुकी है, जिससे किए निर्माण तुमने यह अद्भुत खिलौने। कायरों और बुजदिलों की भीड़ क्यों है, शौर्य और यह तेज क्यों कर खो गया है, क्या हुई रचना तुम्हारी ओ विधाता, बेसुरे क्यों स्वर तुम्हारे हो गए हैं, आँख से अंगार जिनके थे बरस से, शूल के पथ पर चले दिन रात हंस से, तूफान भावों में समेटे बाऊ लेवे, क्यों नहीं निर्माण करते लाड़ लेवे, बंद कर लो अब सृजन तुम्हारा विधाता, या गड़ो फिर से वही वही प्यारे खिलौने। कभी कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, ये मेरा मतलब है, जो पूर्ण हो गया वो रुक गया, उसकी गति समाप्त हो गई। सभी कुछ तो देखो अधूरा रहा है, कोई गीत अब तक न पूरा हुआ है, निश्चित पतन समझो तुम उसी का, किसी को अगर पूर्णता ने छुआ है। जब भी मिली पूर्णता चंद्रमा को, ग्रसा तभी राहु ने शशि को, त्रिशंकु ने जब स्वयं को पूर्ण पाया, न मिली धरा न गगन ही मिल पाया। प्रतिदिन हुआ पूर्ण दिन का उजाला, और फिर निशा का साम्राज्य आया, अगर पूर्णता पा जो रुक गया है, उत्थान उसका वहीं थम गया है, जहाँ पूर्णता है वहीं मृत्यु समझो, रुक गया नियति का क्रम वहीं अंत समझो, अन्वेषण में जो अनवरत लगा है, जीवन का उसने सही मूल्य पाया। एक कविता सबको बहुत पसंद आती है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ बैठो बात करें, बोझिल मन का भार उतारें, थोड़ा सा परिहास करें, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ बैठो बात करें। यह तो स्वप्न जगत है प्री, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, हम दोनों के ओल अलावा यहाँ कोई भी अन्य नहीं, रूठी रूठी यादों की हम थोड़ी मनुहार करें, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ बैठो बात करें। क्यों उदास हो कुछ तो बोलो, क्यों उदास हो कुछ तो बोलो, सजल नयन क्यों पलके खोलो, रूठी है क्यों हंसी अधर से, जाने दो सब बातें छोड़ो, शेष मिलन के क्षण थोड़े हैं, इनको क्यों प्रव्यर्थ करें, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ बैठो बात करें। मुझे देखकर आज तुम्हारा बार बार क्यों मन भर आता, मेरी पीड़ा का मत सोचो, मेरा तो है इससे नाता, बीत गया उसको जाने दो, भविष्य की भी चिंता छोड़ो, वर्तमान पर ही आओ, हम अपना अधिकार करें, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आओ बैठो बात करें। बस मेरा तो जीवन की संध्य वेला है। बाल गए दांत गए सांस अभी बाकी है, संघर्षों से भरे दिन कुछ और अभी बाकी है, परिजन मिले सब लोग मिले, संवाद अभी बाकी है, पीड़ाएं सही बहुत किंतु घाव अभी बाकी है, मानस के समंदर में बहुत कुछ अभी बाकी है, गहरे उतर के उसमें कुछ पाना अभी बाकी है, स्वार्थ के रिश्ते न बहुत दूर तक चलते, स्वार्थ के रिश्ते न कभी बहुत दूर तक चलते, टूटते रहे मगर चुभन अभी बाकी है, अब उब गई मैं उम्र भर इनको निभाने में, किंतु उर के कोने में प्यार अभी बाकी है, अभिव्यक्त न कर सकी
जो सामने किसी के अधरों में बंद वह

0: बात अभी बाकी है। जग के झंझटों में मैं भीड़ में थी अकेली, अव्यक्त उर के ये उद्गार अभी बाकी हैं। जीवन की सांध्य वेला है, फिर भी अभी कुछ कर गुजरने की चाह अभी बाकी है। अंतिम विदा के पूर्व कुछ कर सकूं ऐसा पत्थर पर लिखा वह अमित लेख अभी बाकी है। मूक प्रार्थना और आराधना बहुत की, दर्शन की तुम्हारे अभिलाष अभी बाकी है। संसार में सभी से मुलाकात हो गई है, किंतु मेरी खुद से मुलाकात अभी बाकी है।
1: ये सही है कि कविता हृदय की अनुभूतियां होती हैं, किंतु कविता में और भी बहुत कुछ होता है। सोदाहरण वक्तव्य के रूप में अब हम सुनते हैं डॉक्टर राजीव शर्मा को, जो कविता को विस्तार दे रहे हैं।
2: एक ये हमारा देश जो है, मैंने कहा भयाम रतः इति भारत, आदि शंकराचार्य ने जो कहा, तो आदरणीय दीदी आप इसलिए आपके चरणार विंदो को मैं यहाँ से सादर प्रणाम पुनः निवेदित करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है दुनिया को सबसे पहला शब्द भारतवर्ष ने दिया, ओम। दुनिया को सबसे पहली किताब भारतवर्ष ने दी, ऋग्वेद। दुनिया को गिनती जो सिखलाई, सबसे पहले आर्यभट्ट ने शून्य दिया तब जाकर गिनती बनी। तो हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर किताबों के लिए आत्मोत्सर्ग करने की ऐसी मिसाल है जो पूरी धरणी धरा वसुंधरा पर कहीं मिलती नहीं। अपने किताबों के प्रति इस देश के युवाओं में कितना समर्पण था और कितना त्याग था, ये सुनते ही राघव भैया वो 20 विद्यार्थी जो उस नाव में सवार हो रहे थे, एक एक करके उन्होंने समुद्र में जल समाधि ले ली। ऐसा आत्मोत्सर्ग किताबों के प्रति और ऐसा आत्मोत्सर्ग अपने अतिथि के प्रति देखने की दास्तान विश्व में कहीं नहीं मिलती, ऐसा इत्सिंग और वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा है। हम इतने समृद्ध शब्द सुमनों के देश वाले लोग हैं। उसके बाद भी मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि उन खिलजियों ने जिन्होंने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया, वर्तमान समय में हम उन खिलजियों की मजारों को पीर बाबा की मजार कहते हैं, वहां पर जाकर लोभान जलाते हैं, वहां पर जाकर फूल समर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है आप सभी से देवी और सज्जनों कि हमारे पास 4 वेद हैं, हमारे पास 6 शास्त्र हैं, हमारे पास 18 स्मृतियां हैं, हमारे पास 18 पुराण हैं, हमारे पास 106 उपनिषद हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारे 12 के 12 तीर्थ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। उसके बावजूद यदि हम पीर बाबाओं की मजार पर जाकर लोभान जलाते हैं तो मेरा मानना यह है कि हम अपने आध्यात्मिक स्वाभिमान को जलाते हैं। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन शब्दों की आराधना की जाए, क्योंकि ये शब्द तो क्या गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा 3रे श्लोक में कि ये बताओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली परम ब्रह्म है। तो अर्जुन ने दूसरा प्रश्न दागा, उसने कहा यह बताओ भगवान की परम ब्रह्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर ही परम ब्रह्म है, क्योंकि अक्षर अजर है, अक्षर अमर है, अक्षर अविनाशी है, अक्षर पैदा नहीं होता है, ये तो प्रकट होता है भाई साहब, जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे प्रकट होता है, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ये अक्षरों की आराधना से दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई वो सब इन किताबों के कारण हुई, और उसमें भी कविता की किताबों का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि कविता तो मां सरस्वती की झनकृत होती वीणा की वो सरगम है जो विश्व के नक्षत्र आकाश पर शांति के श्वेत कबूतर उड़ा देती है। कविता तो शब्दों के व्योमाकाश में उदित हुआ भावनाओं का वो सूरज है जिसकी प्रखर रश्मियों से अमन के कमल खिल जाते हैं। कविता तो वो है जो व्यष्टि को व्योम कर देती है, कविता तो वो है जो सृष्टि को ओम कर देती है, और कविता जब रामत्व को धारती है तो पुलकित मंगल भवन में भी हरिओम कर देती है। तो कविता की अपनी ताकत है, कविता की अपनी शक्ति है, मरहम लगाए जख्मों को वो धीरज है कविता, अयोध्या मथुरा काशी में बिरज है कविता, वन बाग उपवन वाटिका का बसंत और खिले साहित्य सरोवर में वो नीरज है कविता। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई कविता की किताबों ने की ऋषि भैया, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं 500 साल पहले भारतवर्ष में एक क्रांति हुई, तब हिंदू आपस में लड़ते थे शैव और वैष्णव के नाम पे, इस एक क्रांति ने शैव और वैष्णव को एक कर दिया, और उसकी बुनियाद में किताब थी जिसमें शिव जी कहते हैं कि उमा दारु जो शित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई, राम ही सर्वोच्च है ये शिव कहते हैं। और राम कहते हैं लिंग थापि विधिवत करी पूजा लंका कांड में कि सबसे ज्यादा पूजनीय यदि कहीं कोई है तो वो शिव है। शैव और वैष्णव जो दंगे किया करते थे 500 साल पहले, एक तुलसीदास की रामचरितमानस किताब ने क्रांति कर दी, शैव और वैष्णव एक हो गए। ये 500 साल भारतवर्ष में हुआ, 500 साल पहले की बात है। उसके बाद 300 साल पहले क्रांति फ्रांस में हो गई, जो ये सब स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व के लिए हुई। उस समय भी वहां पर गिलोटिन पर वहां का जो हुआ करता था, जिसे हम बोलते थे फ्रांस में लुई बोला करते थे, वहां के राजाओं को लुई निरपराध लोगों को गिलोटिन पर काट देता था। तब एक किताब आई, उस किताब का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे रूसो ने लिखा और जिसकी पहली पंक्ति शुरू होती है कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज फाउंड एवरीवेयर इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। उस किताब ने फ्रांस में क्रांति कर दी। हमारे पास 80 साल पहले भारतवर्ष में एक क्रांति हो गई, उस क्रांति की बुनियाद में फिर एक कविता की किताब आ गई। उस कविता की किताब में आया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा आनंद मठ, और उसमें उस कविता को पढ़कर 23, 24 और 25 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब फांसी के फंदे पर चढ़ने लगे तो मारे प्रसन्नता के उनका वजन बढ़ चुका था। ये कविता की ताकत थी जिसने इस राष्ट्र को राष्ट्रगीत वंदे मातरम देकर देश को आजादी का सूरज दिखलाने का कर्तव्य निर्वहित किया। और 50 साल पहले फिर भारत में दूसरी क्रांति हो गई, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों नौजवान इकट्ठे हुए। और पीछे फिर एक कविता आ गई जो रामधारी सिंह दिनकर की, वो आपकी बिटिया सुनाती भाई साहब मोहन भाई सानी का कविता, वो कविता आ गई जिसने इस देश में एक क्रांति कर दी। और उसमें ये लिखा हुआ था कि काल के घर घर नाच से ये सदा आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये भारतवर्ष में 1977 में क्रांति हो गई। यानी दुनिया की हर क्रांति की तह में किताब रही है और किताब में भी काव्य रहा है। इसलिए ये जो काव्य की आराधना में ये जो पुस्तक लिखी गई है, तो मुझे तो वो ख्याल आता है, वो एक परमहंस हमारे यहाँ तो बुआ जी है ना, कविता के माध्यम से कन्वर्सेशन होता रहा, बातचीत का माध्यम हिंदुस्तान की सुजलाम सुफलाम मलज शीतलाम शस्य श्यामल धरती पर कविता रही है, बातचीत होती रही है। वैसा तुलसीदास जी और रहीमदास जी भक्ति काल में दो कवि थे, एक गंगा के किनारे बेचारा गरीब पड़ा रहता था और दूसरा अकबर के दरबार में बड़ा सेनापति था, मगर दोनों में बातचीत होती थी ना, तो कविता में होती थी।
1: डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ बिखरे सुमन को जिन रचना धर्मियों ने स्मरण किया, उनमें शामिल थे अखिल स्नेही, दिनेश शर्मा, मृदुल ज्योतिषी, विभाजी, विभूति रामावत, ऋषि कुमार और आनंद प्रकाश चौकसे। इसी के साथ आज का विविधा का ये अंक अब समाप्त होता है। विविधा

अभी आपने सुना कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं 648 किलोहर्ट्ज पर और इसी के साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं कालू राम बामनिया और साथियों के गाए कुछ निर्गुणी भजन। ये लीजिए, पहला भजन प्रस्तुत है

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत और हम आपको सुनवा रहे हैं कालू राम बामनिया के स्वर में कबीरवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, जिसके अंतर्गत आज हमने आपको सुनवाए कालूराम बामनिया के गाए कबीरवाणी के भजन।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: इस समय सुबह के 9:15 बजने को है, वक्त है सुगम संगीत का। आज सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ पॉप सॉन्ग्स।

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं बाबुल सुप्रियो। आज हम आपको इनके गाए हुए कुछ पॉप सॉन्ग सुनवा रहे हैं एल्बम सोचता हूँ से। लीजिए सुनिए अगला गीत, फैज़ अनवर का लिखा हुआ।

लीजिए श्रोताओं, फैज अनवर का लिखा ये एक और गीत सुनिए बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थे बाबुल सुप्रियो। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, सुबह के 9:30 बजे हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन, राग है देवगिरी बिलावल, तबले पर संगत है गंधार राजहंस की।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन। राग था देवगिरी बिलावल, तबले पर संगत थी गंधार राजहंस की।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत में जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम सुहावना मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकारिणी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा।

0: मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क के बल पर कुंडम ने यह उपलब्धि हासिल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरी घाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरी घाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341,90,00,000 रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिनों बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती जादून। हमारे सभी नए श्रोताओं के लिए बता दें हमारे फोन नंबर, कॉल करने के लिए हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नए श्रोता हमसे जुड़ें, और ऐसे श्रोता जो जिनका लगभग हर हफ्ते या दो तीन हफ्ते में कॉल लग जाता है, वो थोड़ा सा इंतज़ार करें। हमें पता है कि आप हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, पर साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे नए श्रोता हम तक पहुंच पाएं। अभी हम लेते हैं एक कॉल और देखते हैं हमसे कौन से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: नमस्कार भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं दीदी।
0: ये तो बहुत अच्छा है। और भगवान सिंह जी, अभी जो है मौसम ने एकदम से पलटी खाई है और बहुत सारी जगह जो है वो आंधी और ओले भी गिरे हैं, बहुत तेज हवाएं चली हैं। तो कल इंदौर में भी कुछ ऐसा ही मौसम था कि काफ़ी तेज़ आंधी आई, हालांकि बारिश उतनी नहीं हुई। सीहोर में कैसा मौसम रहा?
1: दीदी हमारे इधर भी आंधी आई थी, पानी मामूली सा गिरा दीदी, बूंदाबांदी हुई है लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, और थोड़ी मौसम में राहत हो गई दीदी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी।
0: हाँ, थोड़ा सा जो है राहत मिली कम से कम, क्योंकि पारा जो है वो थोड़ा नीचे आया है।
1: हाँ दीदी, 3-4 डिग्री नीचे आ गया पारा।
0: 3-4 डिग्री नीचे आया है और उससे थोड़ी सी राहत हुई है, जो भारी उमस हो रही थी और तेज गर्मी थी, क्योंकि बादल हो गए हैं तो थोड़ा सा धूप से राहत मिली। अच्छा भगवान सिंह जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल, और गाने के बोले दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है।
0: साजन चले ससुराल फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, कुमार सानू अलका याग्निक का गाया हुआ गीत, ठीक है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद दीदी,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: शिमला से बात कर रहे हैं। काफी दूर से हमारे पास ये एक कॉल आया है राकेश जी का। राकेश जी, क्या आप हमारे नियमित श्रोता हैं?
1: जी जी, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। मैं हर प्रोग्राम में आपका जोड़ करता हूँ। जैसे शनिवार को युगवाणी आता है 5 बजे, जी जी, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट
0: करते हैं। चलिए, मेरी तो आपसे आज पहली बार बात हो रही है।
1: जी, आपसे पहली बार बात हो रही है
0: जी।
1: और बाकी मैं आपके जो प्राइमरी चैनल है, जो अभी 11 बजे भी आएगा विविध बातें इंदौर, उसमें मैं क्या करूंगा, जो निकल में था हर केंद्र पे जुड़ता रहता हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर आज आपकी जैसे यहाँ बात हो गई है, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ दिनों बाद फिर आप कॉल करें। जी राकेश जी, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत आपको सुनना है, फिर आपसे बात करते हैं।
1: जी जी, सबसे पहले तो आज मैं गीत सुनना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास गायक सुमन जी हमारे बीच में रही, तो उनकी याद में एक गाना सुनना चाहता हूँ, फांसी मूवी का, जब आती होगी मेरी याद।
0: चलिए ठीक है, आपको ये वाला गीत हम सुनवाएंगे। राकेश जी, आप क्या करते हैं? शिमला में ही आप तो, रहते हैं?
1: जी, शिमला में हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
0: सेब की बागवानी करते हैं
1: जी। अरे वाह,
0: हिमाचल के जो सेब हैं वो खास तौर पे अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं।
1: जी,
0: काफी मीठे होते हैं।
1: जी जी जी जी जी,
0: और खास तौर पर मतलब अब जो है, क्या सेब आने लगे हैं या फिर अभी फूल आ रहे होंगे?
1: नहीं, अभी तो फूल आ रहे हैं। हमारे जो सेब जो है
0: जी,
1: जुलाई तक जो है तैयार हो जाते हैं।
0: जुलाई तक तैयार हो जाते हैं?
1: जी जी जी जी।
0: अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि जैसे जैसे हम हिमाचल में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तब वहाँ शायद थोड़ा सा लेट फसल आती है, देर से आती है।
1: जो लेट, जो हाइट वाला जो ज्यादा
0: हाँ
1: लगा रहता है, तो जैसे किन्नौर का बात करो तो
0: हाँ जी,
1: किन्नौर में अगस्त सितंबर में जो है,
0: अच्छा, एक दो महीने लेट चलता है वहाँ पर, फिर फसल थोड़ी सी देर से आती है।
1: जी जी जी, क्योंकि वहाँ ज्यादा ठंड होती है। लेकिन यहाँ जो हमारे शिमला में कोटखाई क्षेत्र में
0: जी,
1: जुलाई में जल्दी होती है, क्योंकि थोड़ा ये ठंडा भी है और नो हाइट वाला जो है क्षेत्र।
0: अच्छा,
1: इस हिसाब से आते हैं
0: जी, जी। तो आप जो है वो फिर अपने सेब हिमाचल में ही बेचते हैं या बाहर भेजते हैं?
1: हिमाचल में तो बेचते, तो हिमाचल से बाहर भी बेचते, क्योंकि अगर हिमाचल में ज्यादा सेब आते तो फिर वो यहाँ से जो है हमारे जो आरती होते हैं जो मंडी वाले, तो बाहर
0: भेज देते हैं। मतलब आप वहाँ मंडी में दे देते होंगे अपने सेब, और वहाँ से जो है फिर वो बाहर सब जगह चले जाते हैं।
1: जी जी, बाहर सब जगह पे चल जाते हैं। और कई जो है, कई जैसे कोई दिन के पास ज्यादा पेटियां निकलेंगी सेब की, तो खुद ही बाहर।
0: अच्छा, वो खुद ही बाहर भेज देते हैं।
1: जी जी जी
0: जी, चलिए बढ़िया है। तो आपके यहाँ के सेब की हम मान लें कि मिठास इंदौर तक भी पहुँच रही होगी।
1: जी जी जी, बिल्कुल।
0: चलिए, सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का एक गीत।
1: जी जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: चलिए हम लेते हैं अगला कॉल। हेलो हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, फोन कट गया है। अगले श्रोता से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, आई एम अ हॉटलाइन।
1: आते गांव से बोल रहे थे, गोविंद जलोदिया।
0: नमस्कार गोविंद जी, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप बढ़िया हैं, ये अच्छी बात है।
1: और कल जो ठंडा ही कर गया पूरा खाते गांव
0: ठंडा हो गया है, बारिश भी हुई।
1: हाँ, बारिश अच्छी हुई।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो हम मान सकते हैं कि मौसम थोड़ा सा ठंडा रहेगा।
1: हाँ, ठंडा रहेगा, बिल्कुल सही है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: अरे वो है खानदान पिक्चर का,
0: खानदान फिल्म का,
1: लीन गगन के उड़ते बादल।
0: हाँ, बहुत सुंदर गाना है।
1: हाँ, मौसम के हिसाब से है।
0: अच्छा, बादल को बुलाना चाह रहे हैं आप? जी जरूर। चलिए तो बादल को बुलाने की अब जो है कवायद करते हैं कि मानसून यहाँ पर भी जल्दी दस्तक दे और गर्मी से थोड़ा छुटकारा मिले।
1: ठीक है,
0: लीजिए गोविंद जी, आपके पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: ठीक है।

0: लीजिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं अगला कॉल. हेलो, आई एम एच हॉटलाइन.
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: इंदौर आकाशवाणी.
0: जी
1: जी, मैं एक गाना सुनना था.
0: जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए.
1: मेरा नाम अशोक प्रजापति है, मैं बेटमा जिला इंदौर से बोल रहा हूँ.
0: बेटमा से बोल रहे हैं, चलिए. हाँ, तो इंदौर का पड़ोसी कस्बा है.
1: हाँ, कस्बा
0: है. जी, जी. बताइए अशोक जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गीत तो मैं बताऊँ, मैम मेरा पहली बार फोन लगाए आकाशवाणी.
0: पहली बार लगाया है? अरे ये तो हमें बहुत खुशी हुई. जी, पहली बार आप. हाँ जी, अच्छा, कोशिश की. चलिए, कोशिश आपकी सफल हो गई. आज आपकी कोशिश.
1: हाँ, सफल हो गई. और हेलो डॉक्टर, में भी फोन लगा था मैं, उसमें लग जाता है, पर इसमें क्यों नहीं लगता है मैम?
0: क्योंकि इसके लिए बहुत सारे श्रोता जो हैं वो अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए कोशिश करते रहते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में जो है वो थोड़ी सी प्रयास ज़्यादा करना पड़ते हैं. पर हमें भी खुशी है अशोक जी कि आज पहली बार आपका कॉल लगा, मेरी आपसे बात हो रही है. आप ऐसा कीजिए, पहले फिल्म का नाम और गीत बता दीजिए, उसके बाद आपसे और बात करेंगे.
1: जैसी करनी वैसी फिल्म का नाम है जी. और गाना भी वही, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा.
0: जी जी जी जी जी. नितिन मुकेश की आवाज में सुनना है आपको ये गीत?
1: जी जी, नितिन मुकेश की.
0: चलिए, आपको ये वाला गीत हम सुनवाएंगे. हाँ जी,
1: थोड़ा सा और है. हाँ, मैं कम से कम 30 वर्षों से आकाशवाणी रेडियो और सुन रहा हूँ.
0: अरे वाह, 30 सालों से आप हमारे श्रोता हैं. और आपकी आज पहली बार इस फिल्म गीत के कार्यक्रम में पहली बार बात हो रही है मैच हॉटलाइन में. अशोक जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, अपना हम प्रजापति हैं, मटके बनाते हैं, मटके बेचते हैं.
0: अच्छा,
1: गणेश जी की मूर्तियाँ.
0: जी जी
1: जी, दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनाते हैं.
0: जी जी जी. तो अभी तो ये जो है गर्मी अभी गई है, तो ये तो पूरा सीजन होता है, तो इसके लिए तैयारी आप कब से शुरू कर देते हैं?
1: ये मटके की तैयारी दीपावली बाद से शुरू हो जाती है उधर.
0: अच्छा, तो अच्छा, उसके पहले आपकी दिए की तैयारी, दीपावली की तैयारी चल रही होती होगी.
1: दीपावली
0: जी, और उसके बाद ही फिर मटकों के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं. अच्छा,
1: हाँ, गणेश जी बन रहे हैं, गणेश जी की तैयारी चल रही है.
0: अच्छा, मतलब जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में गर्मी की छुट्टियों का समय आता है, जब वो थोड़ा सा पढ़ाई से ब्रेक मिलता है, तो क्या ऐसा कोई समय होता है जब आपको थोड़ा सा विराम मिलता हो, ब्रेक मिलता हो कि भाई अभी ज्यादा काम नहीं है?
1: ब्रेक तो ये इसी महीने में रहता है मैडम.
0: अच्छा,
1: अप्रैल और मई.

0: अप्रैल और मई में, और बारिश में जब जैसे बारिश शुरू हो जाती है और काफी बारिश हो रही होती है, तो क्या उस समय भी आपका काम जारी रहता है? क्योंकि उस समय तो सुखाना और मुश्किल होता होगा ना,
1: बनावा उसमें गणेश जी का जो कलर वगैरह।
0: अच्छा, फिर ये काम करते हैं।
1: हाँ कलर वगैरह,
0: ठीक है। तो गणेश जी जो आप बनाते हैं वो मिट्टी के बनाते हैं?
1: मिट्टी के बनाते हैं और इसके प्लास्टर के बनते हैं।
0: अच्छा, वो वाले भी करते हैं। चलिए, वैसे मिट्टी के अगर बनाएं और उसको बढ़ावा दें तो और बहुत ही अच्छी बात होगी।
1: बनाते हैं ना मैं जी,
0: और उसके बाद तो फिर माता जी की मूर्तियां भी तैयार होना शुरू हो जाती हैं।
1: माता जी की मूर्तियां।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे बात करके, और आप आगे भी कोशिश करते रहिएगा, पर एक आध महीने बाद आप कॉल करेंगे तो और अच्छा लगेगा, और हमें उम्मीद है कि फिर आपसे बात हो पाएगी।
1: जी जी।
0: चलिए, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन आरती के साथ। चलिए हम लेते हैं अगला कॉल। हेलो हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर, एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ मैम।
0: सूर्य प्रताप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी।
0: कैसे हैं आप? अशोकनगर में कैसा मौसम है इस समय?
1: मैम मौसम तो बढ़िया है फिलहाल में, तो कुछ दिनों से थोड़ी ठंडक सी महसूस हुई है,
0: दो तीन दिन से थोड़ा सा अच्छा चल रहा है।
1: हाँ
0: वैसे अशोकनगर

0: अभी काफी गर्मी पड़ती है।
1: बिल्कुल पड़ती है मैम
0: जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है दूल्हे राजा।
0: दूल्हे राजा फिल्म का गीत।
1: हाँ
0: ठीक है, कौन सा वाला?
1: हाँ, गाने के बोल है, आई बन के रुतमस्तानी मेरे सपनों की रानी।
0: चलिए ठीक है, आपको आपके पसंद का ये गीत सुनवाएंगे सूर्य प्रताप जी। और वैसे आप अशोक नगर में क्या करते हैं?
1: अशोक नगर तो जिला है मैम, वैसे हम गांव में रहते हैं
0: जी, बहादुरपुर।
1: हाँ,
0: है ना, यही बताया था आपने।
1: हाँ,
0: जी, वहाँ पर आपकी खेती वगैरह है कुछ?
1: हाँ, खेती बाड़ी है मैम।
0: ठीक है, और इस समय आप की क्या तैयारी चल रही है खेती के लिए?
1: अभी तो धान की तैयारी चल रही है मैम, धान लगाते हैं।
0: धान लगाते हैं, तो एक बार बारिश हो जाएगी उसके बाद आप लगाना शुरू करेंगे या फिर अभी पहले से बो देते हैं?
1: नहीं, बारिश तो ऐसा होता है मैम, अभी तो तैयारी चल रही है, मतलब अभी गड़े मड़े बनेंगे, मतलब उसमें लगाना, पौधरोपण होगा अभी।
0: जी, तो इसके लिए तो जैसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो
1: जी जी जी मैम।
0: वैसे
1: हाँ
0: तो बाकी कुछ सब्जियां या कोई दूसरी चीज़ें बोई जाती तो ऐसी जुताई कर देते हैं, मेड़ जैसी बनी रहती है और बीच में फिर वो लगाते जाते हैं, तो क्या ध्यान के लिए भी ऐसे ही कुछ करना होता है या फिर चौड़ी क्यारियाँ कुछ बनानी होती हैं?
1: नहीं, मैम, पानी की तो पर्याप्त व्यवस्था रहती है क्योंकि
0: जी
1: यहाँ बोर होता है हमारे यहाँ।
0: अच्छा
1: हाँ, तो बोर से पानी जाता है।
0: ठीक है, तो मतलब अभी आप कुछ समय में जो है वो बुवाई कर देंगे।
1: जी,
0: और ये फसल फिर कब आ जाती है?
1: ये फसल लगभग नवंबर या दिसंबर के बीच में आ जाती है मैम,
0: अच्छा
1: अक्टूबर नवंबर के। हाँ
0: ठीक है, तो मतलब कि अब ये बुवाई का काम हो जाने के बाद उसके बाद फिर आपको बस देखना होता है या फिर कुछ काम और आता है इसमें जो करना होता है, क्योंकि
1: अब वो
0: बारिश शुरू हो
1: तो
0: जाएगी तो पानी तो अपने आप लगता रहेगा।
1: हाँ,
0: वैसे मैंने
1: तो
0: सुना है कि धान के जो है जैसे रोपे एक बार हो गए तो उनको फिर एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है, ऐसा होता है?
1: जी मैम होता होगा, पर मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे पिताजी वगैरह करते रहते हैं, हम तो सिर्फ सहयोग करते हैं उनका।
0: हाँ, तो सहयोग करने में आपने ध्यान नहीं दिया, सीखा नहीं है क्या?
1: खेती के कामों में सहयोग तो मैं नहीं कर पाता मैम क्योंकि
0: अच्छा
1: मैं दृष्टिबाधित हूँ, पर
0: अच्छा
1: छोटे
0: अच्छा अच्छा
1: मोटे कामों में सहयोग कर
0: बाकी
1: देता
0: जगह
1: हूँ।
0: आप मदद कर देते हैं,
1: हाँ
0: चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लगा सूर्य प्रताप जी आपसे बात करके, थोड़ी सी हमको जानकारी भी हुई। चलिए अब आप सुनिए आपके पसंद का गीत।
1: जी मैम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी,
1: मैं श्रीनिवास।
0: श्रीनिवास जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: ठीक हैं? आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: चोरी चोरी फिल्म का।
0: चोरी चोरी फिल्म का गीत सुनना है?
1: हाँ
0: जी, ये राज कपूर जी की फिल्म है, राज कपूर और नरगिस की। जी, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, तो आपको बिल्कुल हम ये वाला गीत जो है वो सुनवाएंगे। जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: राज कपूर जी को समर्पित इस गीत के बाद लीजिए अब हम देखते हैं हमारा अगला कॉल किस श्रोता का है। हेलो हैमच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजू
0: राजू जी अग्रवाल बोल रहे हैं। राजू जी अब आपका नाम जो है हमको हमारे सभी श्रोताओं को रट सा गया है क्योंकि आपके कॉल जो हैं आते ही रहते हैं। हालांकि मुझसे आपकी बात कुछ समय बाद हो रही है पर आप बाकी कार्यक्रमों में भी कॉल करते रहते हैं।
1: मैं बहुत से श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि वो बार बार रोज फोन लगा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वो रोज फोन नहीं लगाए, मतलब दूसरे को मौका दें, वो सुन रहे हो अगर मेरी बात तो समझ जाए।
0: हाँ, और जी शायद वो श्रोता भी आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी जो है वो कॉल दो एक महीने के अंतराल से करें।
1: हाँ, और बेकार की फालतू की बातें तो बिल्कुल ना करें इसको, जिससे कि ये लाइन बिजी हो। वो आज गीत दीदी ये राज कपूर जी महान फिल्मकार की और कलाकार है, वो महान
0: उनकी आज पुण्यतिथि है।
1: हाँ, 2 जून की, तो उनकी आज में जागते रहो फिल्म का गीत सुनवा दीजिए।
0: जागते रहो फिल्म का कौन सा गीत?
1: ये मुकेश जी की आवाज में जिंदगी ख्वाब है ख्वाब में, ऐसा गीत है।
0: जी जी जी,
1: और लाइन ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये
0: जी बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं। और आपसे भी निवेदन है कि अब आप एक दो महीने बाद ही कॉल करें।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी आपका नाम?
1: सपना।
0: सपना जी, मेरी तो आपसे मेरे ख्याल से पहली बार बात हो रही है।
1: कभी कभी कॉल करती हूँ।
0: चलिए, ये अच्छा है कि कभी कभी आप कॉल करती हैं, और कॉल अगर लग जाता है तो ये अच्छी बात है। सपना जी, आप कौन सा गीत आज सुनना चाह रही हैं?
1: मूवी का नाम है हम तो, और गाने के बोल हैं लड़की के बोल जाने लड़कों से नहीं होती।
0: ठीक है, हम तुम ये जो नई वाली फिल्म है
1: जी,
0: इसका गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। सपना जी, आपका रेडियो सेट ऑन है क्या?
1: नो मैम।
0: नहीं, ठीक है, आप मतलब मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं
1: जी?
0: ठीक है, आप क्या करती हैं? हेलो हेलो, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? हमारा अपने श्रोता से संपर्क टूट गया है, पर इसके पहले उन्होंने अपनी पसंद बता दी थी, तो उनकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म हम तुमसे।

0: हेलो, आई एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं माय कर रहा हूँ, जिला आगरमालवा, ग्राम मनासा से।
0: आगरमालवा, जिला मनासा से महेश जी बोल रहे हैं।
1: जी दीदी।
0: नमस्कार महेश जी, कार्यक्रम में आप कॉल करते रहते हैं।
1: जी दीदी, बिल्कुल।
0: और पिछली बार कब कॉल किया था?
1: जी पिछली बार भी लगभग अभी 2-3 दिन हुआ है।
0: 2-3 दिन तो फिर इतनी जल्दी कॉल नहीं करना चाहिए था आपको। आपसे हम हमेशा ये निवेदन करते हैं कि कम से कम एक आध महीने बाद आप कॉल करें, ताकि हम
1: ऐसा होता है कि फोन ही आप लोगों को लग नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से लाइन मिलती है आप।
0: हाँ, तो आप ऐसा किया कीजिए ना, 15 दिन बाद लगाना शुरू किया कीजिए, है ना? तो चलिए, कभी अगर लग भी जाए तो ये हो जाएगा कि 15 दिन बाद तो कम से कम बात हुई, और अगर नहीं भी लगी तो 1 महीने में तो कभी ना कभी कॉल लग जाएगा।
1: जी बिल्कुल, लग जाता है,
0: है ना? तो फिर और अगर आप लगाते रहते हैं, आपका कॉल लग जाता है, तो आपसे फिर निवेदन है, अब चूंकि कॉल जो है वो ऑन ईयर आ गया है, तो आपकी पसंद का गीत अभी मैं सुनवा देती हूँ, पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगली बार अब जब कॉल करें तो आप सीधे 1 महीने बाद कीजिएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं आज?
1: जी दीदी, आज सुनवा दें निगाहें पिक्चर का।
0: निगाहें फिल्म का गीत कौन सा वाला सुनेंगे?
1: सावन के झूलों ने मुझको झुलाया।
0: सावन के झूलों ने मुझको झुलाया। चलिए, सावन के झूले बंधने में तो खैर समय है, पर हाँ, गर्मी में ही, वैसे कल थोड़ी सी आंधी और बारिश थोड़ी हो गई है, तो महसूस कर लीजिए सावन और सावन के झूले, और सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आरती को नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बज चुके हैं। अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, जहां पर चल रहा है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: लेकर आते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम, तो तैयार हो जाइए हमसे बातें करने और हमारी पसंद के गीत सुनने के लिए। तो लगाइए नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए, आज हम आपको विषय देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे श्रृंगार के बारे में। तेरी मुस्कान से महके जीवन का हर पल, जैसे फूलों पर ठहरा हो ओस का निर्मल जल। तेरी आंखों में देखा जब प्रेम का संसार, मन में खिल उठे सहसा खुशियों के हजार। तेरा स्नेह मेरा सबसे सुंदर श्रृंगार, तुझसे ही जीवन में आया है मधुमय बहार। तो दोस्तों, फोन करिएगा और हमसे बातें करिएगा इस विषय पर कि श्रृंगार हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का।
3: हेलो
2: जी, आपका फोन लग चुका है। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। हेलो
3: जी, फोन करें गीत सुने
2: जी। बात आपकी गीत हमारे हैं आज सर
3: जी। बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे जी। नमस्ते।
2: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी
3: जी? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: उज्जैन से जी, जी हाँ। प्रेम सिंह जी,

0: जी।
1: आज हमने विषय लिखा है साज श्रृंगार। महिलाएं जो श्रृंगार करती है ना, उसके बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है देखकर?
0: जी, महिलाओं को तो ऐसा कहा जाता है कि श्रृंगार के बिना महिला अधूरी होती है
1: जी।
0: लेकिन इतना भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ ऐसे दिखे कि अलग हटके दिखे। हाँ, महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती है और हर महिला का अधिकार भी है श्रृंगार करना, लेकिन साथ में पुरुष भी इतने मतलब पीछे नहीं हटते हैं ना दीदी, आपको बताऊं, वो भी तैयार होते हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं और मतलब किसी शादी समारोह में जाते हैं ना
1: जी,
0: तो इसी तरह से वो भी तैयार होके जाते हैं
1: जी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना
0: जी। बिल्कुल, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तैयार होके जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमारी तरफ लोग आकर्षित होंगे, तो ऐसा होना भी चाहिए
1: जी। जी तो
0: मैं बताऊं, अब मैं कहीं शादी में जाता हूँ ना तो अच्छी तरह से सज सवर के ही जाता हूँ, और अपने बच्चे हैं मेरे, बड़ी वाली लड़की बिंदिया है वो भी रेडी होके जाती है, उसके बाद कृष्णा है, साक्षी है, उसकी मम्मी है, मतलब हम सब तैयार होके जाते हैं ना तो ऐसा बतलाया जाता है कि हमारी फैमिली सबसे अलग ही दिखती है।
1: अच्छा जी,
0: समारोह हम सब लोग मतलब अच्छे से रेडी होके जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो है, अपडेट होकर जाना और अप टू डेट होकर जाना, यानी दोनों बहुत जरूरी है ना। तो आपने फोन किया, आज बात आपकी गीत हमारे हैं, तो अपनी पसंद का कोई गीत हम आपको सुनवाएंगे। फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद
0: जी, थैंक यू सो मच
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हाँ
0: बात आपकी गीत हमारे में, आज हमने विषय रखा है साज श्रृंगार के बारे में।
1: महिलाओं के हाँ
0: जी, महिलाएं पुरुष पुरुष भी तो अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, तो हम कैसा फील करते हैं, और हम जब कोई बहुत अच्छे से तैयार होता है, मतलब व्यवस्थित होता है,
1: जी,
0: तो कैसा लगता है हमें देखकर।
1: प्रमुख रूप से तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। अब
0: जी
1: पुरुषों का तो अनुभव थोड़ा सा कम रहता है। जी
0: जी तो अपना परिचय दे दीजिएगा पहले,
1: जी जी जी जी जी जी जी
0: बताइए अपने बारे में।
1: नमस्ते जी,
0: जी, बताइए।
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी
0: योगेश जी, जी बताइएगा कैसे हैं, वहाँ गर्मी कैसी हो रही है?
1: बहुत गर्मी है, 43-44 डिग्री तापमान चला जा रहा है।
0: जी, तो इसीलिए तो हमने ये विषय रखा है कि ऐसी गर्मी में यदि हमें कहीं शादी ब्याह या फंक्शन में जाना है, तो हम कैसे तैयार हों कि हम लास्ट जब लौटें तब भी उतने ही फ्रेश फ्रेश रहें।
1: बड़ा
0: जी योगेश जी,
1: उसमें काफी जो धूप होता है, पसीना आता है, तो
0: जी
1: वो काफी चैलेंजिंग होता है को बनाए रखना।
0: जी जी जी
1: और रही बात साज श्रृंगार की, तो वो तो अपने अपने जो प्रदेश है या फिर अपने क्षेत्र
0: जी
1: हैं। हमारे यहाँ जैसे प्रमुख रूप से तो ग्रामीण परिवेश में, हमारे यहाँ ही नहीं लगभग सभी जगह
0: जी
1: साड़ी सबसे प्रमुखता होता है एक श्रृंगार के रूप में महिलाओं का।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: पुरुष जैसे हम लोग हो गए तो जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, तो
0: जी जी जी
1: यही चीजें बहुत आयत में चलती हैं।
0: जी
1: और श्रृंगार में तो जितना हम कर ले उतना कम लगता है।
0: जी क्योंकि 16 श्रृंगार माने गए हैं ना महिलाओं के
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो।
1: और भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है
0: जी,
1: वो तो इन्हीं सब चीजों पर कह सकते हैं टिका हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी, आपको ये नहीं लगता कि आजकल लोग थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं
1: हाँ,
0: जो?
1: आधुनिकता है और तरह तरह की जो आजकल की जो हम आधुनिकता में जो देखते हैं
0: जी
1: वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को भी ट्रेंड में लेते हैं जिनसे हमारा ज्यादा मेल नहीं खाता है।
0: जी जी जी
1: जो
0: तो
1: पारंपरिक परिधान है
0: जी,
1: और वो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी जब हम पारंपरिक रूप से तैयार होते हैं शादी ब्याह में, तो अलग ही दिखता है ना, पहचान ही नहीं आते
1: जी
0: कि अरे वो ये वही है।
1: जी जी जी धन्यवाद।
0: तो फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: जी नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे आपकी सेवा में हम हैं।
1: नमस्कार मैम।
0: जी,
1: मैं शिवपुरी जिले के रामकीड़ी गांव से मोतीलाल परियार बोल रहा हूँ।
0: मोतीलाल जी, मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: जी मैम नमस्ते।
0: जी, मोतीलाल जी कहाँ से, जगह कहाँ है आपकी?
1: शिवपुरी जिले के रामखेड़ी मारा से परियार बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, कैसे हैं मोतीलाल जी?
1: कृपया मैम ईश्वर की और आप लोगों की।
0: जी, हम लोगों का सबका स्नेह है आपके साथ। अच्छा मोतीलाल जी, आज जैसे आपके नाम में ही मोती लिखा हुआ है, तो आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम श्रृंगार करते हैं या बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है और लोग हमें किस तरह से देखते हैं। आज हम वही बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी मैम, तो
0: बताइए, महिलाएं जब श्रृंगार करती हैं और जब वो निकलती हैं घर से, तो कभी वेणी लगाती हैं, कभी सिंदूर, कभी बिंदी लगाती हैं, तो कैसा लगता है देखकर?
1: जी मैम ऐसा ही है कि बढ़िया लगता है। वो जो बड़ी श्रृंगार करके जाते हैं तो मिलते जुलते हैं रिश्तेदारों में,
0: जी,
1: और
0: जी।
1: बढ़िया।
0: और मोतीलाल जी, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, पता है? जब पैरों में हम पायल पहनते हैं, पहले देखा था कि बहुत मोटी मोटी पायलें पहनी जाती थी, तो
1: जी
0: जो
1: मैम अब भी तो पहनती है ना।
0: जी तो जो पहनती है ना, उनके कमर में पैरों में उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जो नहीं पहनती है उनको ज्यादातर शिकायत

0: जाती है। और यदि शिकायत रहती है और वो अच्छी मोटी मोटी पायलें पहन लेते हैं, पहले तो जैसे करधोनी भी पहनी जाती थी, करधन बोलते हैं जिसको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये अपनी जो स्पाइन है, अपनी रीढ़ की हड्डी, ये दबी रहती थी और ये बहुत सारे दर्द हमें नहीं होते थे। आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
1: जी मैम, क्या है वो, इसमें हमारे गांव में तो सब औरतें पहनती हैं, अब भी पहनती हैं,
0: जी,
1: और जो बाजार साइड में वो बाजार में कुछ नहीं पहनती, तो
0: हाँ
1: गांव गांव में तो अच्छी लगता है उनको पहनना।
0: जी, तो वो स्वस्थ भी
1: बिल्कुल
0: रहती हैं, आप देखिएगा, है ना?
1: स्वस्थ रहती हैं, वे
0: बिल्कुल,
1: तो उनका शौक ही यही है मैडम, श्रृंगार उनका।
0: हाँ। तो देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, है ना?
1: जी
0: तो पहले
1: जी
0: तो
1: जी
0: गले में हंसली और ये सारी चीजें पहनी जाती थी स्वस्थ रखने के लिए। तो मोतीलाल
1: जी
0: जी, आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन करने के लिए,
1: जी मैम,
0: और
1: नमस्ते।
0: सुनते रहिएगा आकाशवाणी मधुबनी।

0: हेलो
1: जी, बात
0: जी, नमस्कार।
1: आपकी गीत हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको
1: जी
0: याद है
1: जी
0: कि आज बात आपकी गीत हमारे होना है।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल याद है,
0: जी
1: नियमित श्रोता हूँ इसलिए याद रहता भी है
0: रखते
1: और
0: हैं,
1: रखना भी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो आज मैं आपका परिचय जानने से पहले विषय बता देते हैं। आज हम साज और श्रृंगार के बारे में बात करेंगे आपसे। अब अपना परिचय दे दीजिएगा मुझे।
1: जी, मैं रानी दलैया छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ मैं।
0: रशीद अहमद जी?
1: जी
0: हाँ, छतरपुर से
1: जी छतरपुर से। जी,
0: जी, बताइए रशीद जी।
1: साज और श्रृंगार मतलब ये
0: 16 श्रृंगार होता
1: जी
0: है ना, जो हम बेड़ी लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी महावर लगाते, मेहंदी लगाते, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं
1: अच्छा।
0: जी।
1: श्रृंगार तो खैर ठीक है अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा श्रृंगार तो आपका सादगी और आपका चरित्र सबसे बड़ा श्रृंगार
0: जी जी जी
1: है ना।
0: जी
1: सारी चीजें अपन लोग करते हैं ठीक है, लेकिन
0: जी
1: सबसे बड़ा जो है वो तो आपका उसमें झलकना चाहिए आपके किरदार से, है
0: अरे वाह वाह जी, यही तो हम चाह
1: ना।
0: रहे थे कि कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो कि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो जाएं उससे।
1: जी
0: जी,
1: जी जी है ना।
0: तो
1: बाकी बाहरी रूप रंग तो ठीक है, आदमी को अपना मेंटेन करना चाहिए है ना।
0: जी
1: ईश्वर के दिया हुआ रूप रंग होता है
0: जी जी
1: ना,
0: जी
1: जो जैसा है उसको अपन वैसा स्वीकार करें और उसको अपन थोड़ा बहुत मेंटेन भी किए रहे वक्त
0: हाँ
1: के हिसाब से है
0: जी जी जी
1: ना। जैसे धूप पड़ रही है तो उसमें अपनी सुरक्षा रखें अपन, या बारिश में इधर उधर जहां जैसा भी है,
0: जी। अब जैसे
1: एलर्जी
0: कोई
1: है ये
0: घर
1: है
0: में कोई
1: वो।
0: फंक्शन होता है या कहीं जाते हैं तो थोड़ा सजना धजना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ नहीं बिल्कुल करना भी चाहिए,
0: हाँ
1: वो करना चाहिए वक्त की डिमांड के हिसाब से, वो चीज अच्छी भी
0: जी जी
1: है ना करना चाहिए। लेकिन इतना मतलब ओवर भी ना हो जाए मेकअप के, स्किन को भी नुकसान हो या कोई
0: हाँ
1: मतलब वैसे लोग कमेंट्स करें कोई, है ना
0: जी।
1: ये है तो
0: आज जो
1: इतना।
0: इतने प्रोडक्ट चल रहे हैं कि सुंदर बनाने के लिए, उसका भी हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना चाहिए ना।
1: जी, मतलब प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन
0: जी
1: मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इफेक्टिव हैं,
0: जी वही
1: है
0: वही
1: ना।
0: वही
1: बिल्कुल
0: आज का,
1: बात तो सही है जी
0: आज इस बात आपकी गीत हमारे में ये विषय लेने का यही मतलब है मेरा, कि हम अंधाधुंध या जो हम देख लेते हैं इधर के विज्ञापन में, इसमें उसके हिसाब से ना जाकर बहुत प्रैक्टिकली सोचें और फिर अपने ऊपर यूज करें उस सब सामान
1: बिल्कुल।
0: का।
1: जो चीज अपन को सूट कर रही है उसी को यूज करें, और ज्यादातर ये हो कि हर बार अपन यूज करें है
0: जी।
1: ना, तो ज्यादा अच्छा है उसमें।
0: अब श्रृंगार में देखिए उबटन है, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि घर का ही उबटन करें, बेसन ले लें और चावल और दाल का
1: जी,
0: निकाल के, है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: दही है
1: करें
0: और
1: जी
0: फ्रूट्स हैं,
1: जी
0: इस हिसाब से करेंगे तो आप सुंदर भी रहेंगे और कोई नुकसान भी नहीं है इससे।
1: जी जी मेन वही है कि मतलब श्रृंगार करें लेकिन कोई नुकसान ना हो, वो ज्यादा सही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। और बाकी तो सादगी सबसे बड़ा श्रृंगार है ना,
0: जी।
1: सिंपल रहना मतलब और उच्च विचार है ना।
0: जी
1: अच्छा एक दूसरा आज हम थोड़ा सा एक चर्चा एक मिनट की और कर ले मत, कि
0: बताइएगा
1: सुमन कल्याणपुर साहिबा गुजर गई हैं कल है
0: जी।
1: ना, तो उन जो कि फिल्म संगीत से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: अब पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम मतलब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं है
0: बिल्कुल, पूरे
1: ना।
0: श्रोताओं
1: भगवान
0: और हमारी आकाशवाणी परिवार, पूरा मध्य प्रदेश, क्या पूरा
1: जी
0: भारत ही उनको श्रद्धांजलि दे रहा है ना।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: तो
1: ईश्वर उनकी
0: एक
1: आत्मा को शांति दे, उनके
0: बिल्कुल
1: तमाम प्रशंसकों को दुख झेलने की हिम्मत दे,
0: बिल्कुल
1: और उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज लगातार गूंजती रहेगी क्योंकि उनकी
0: बिल्कुल
1: आवाज सुनते सुनते अपन लोग बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो चलिए इस अहमद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू मैम,
0: जी
1: थैंक यू
0: जी
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: जी दीदी नमस्कार।
0: जी, आज हमने
1: मैं ग्राम वापुष्ट गौना कुशमार थाना सूजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपका अपना रेडियो मित्र दीपक कुमार नामदेव बात कर रहा है दीदी।
0: दीपक जी। जी
1: जी
0: दीपक जी, आज हम

0: विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में जी, तो आप क्या करते हैं दीपक जी?
1: जी मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, आप सही, तो श्रृंगार आप ही कराते हैं लोगों का?
1: जी जी, अगर लोग जैसे कपड़े बनवाते हैं जिस प्रकार के, तो सभी प्रकार के डिजाइनों कई डिजाइनों द्वारा कपड़ा बना देते हैं और वही व्यक्ति को पहना देते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है।
0: जी,
1: जैसे शादी ब्याह में, अगर शादी ब्याह की घटने हो तो फिर अगर दूल्हे का कोट पैंट हम लोग ही नहीं बनाएंगे तो कहाँ से वो श्रृंगार होगा, कहाँ से अच्छा लगेगा।
0: हाँ, वही तो कह रहे हैं कि पूरा बेसिक चीज तो आप ही उसमें तैयार करते हैं उनको। तो बताइए क्या महत्व है अच्छे कपड़े, मतलब फिटिंग के, और अच्छे कपड़े पहनने का, साफ सुथरे प्रेस किए हुए, और थोड़ा बहुत श्रृंगार करने का क्या महत्व है?
1: सबसे पहले अच्छा कपड़ा हम लोगों का राजा रंग कहलाता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का कपड़ा।
0: जी,
1: अगर वो कपड़ा व्यक्ति को बन जाए और उसका फिटिंग का बन जाए तो काफी अच्छा लगने लगता है और व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है। कपड़ा जैसा चाहो इतना ही खराब कपड़ा हो, लेकिन उसकी फिटिंग बनावट सही आ जाए तो कपड़ा ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है और आदमी को भी अच्छा लगने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे घर में लेडीज काम भी होता है, तो दुल्हनों का हमारी बहन जी तैयार करती हैं वैसे, और कपड़े भी बनाती है लहंगा चुन्नी, तो बहुत अच्छा साज सज्जा कर लेती है।
0: जी जी, तो मतलब एकदम रूप परिवर्तन हो जाता है ना साज श्रृंगार और अच्छे कपड़े पहनने के बाद।
1: मेकअप को अगर कितना ही कलर मद्दा हो, मेकअप कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को आप पहचान नहीं सकते।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल रूबरू हो जाता है, बिल्कुल अलग से रूप बदल जाता है।
0: जी बिल्कुल, यानी कि हम बहुत सुंदर कर देते हैं लोगों को, है ना, साज श्रृंगार से। तो आप किसके, जेंट्स के कपड़े सिलते हैं या महिलाओं के सिलते हैं?
1: जी हम तो दोनों सिल लेते हैं, लेकिन बहन हरे हैं तो वो लेडीज सिलती हैं, हम जेंट्स सिलते हैं, लेकिन बना तो हम लोग दोनों लेते हैं, जेंट्स भी बना लेते हैं और लेडीज भी बना लेते हैं।
0: अच्छा जी जी,
1: क्योंकि हमारा पैतृक धंधा सिलाई ही है।
0: जी, तो चलिए दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही लोगों को सुंदर बनाते रहिए, फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: हेलो
1: हेलो, मध्य प्रदेश भोपाल।
0: जी, मध्य प्रदेश भोपाल से बात आपकी गीत हमारे। आज हमने विषय रखा है साज और श्रृंगार के बारे में, है ना?
1: जी
0: कैसे सजना धजना, जो 16 श्रृंगार हमारे माने गए हैं ना, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले।
1: मैं कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संबलपुर हाथरी से।
0: जी, आपका
1: आप
0: नाम?
1: कौन बोल रही हैं? आप मैडम कौन बोल रही हैं?
0: मैं साधना जैन बोल रही हूँ।
1: चालू जाए। आपने नाम बोले थे मेरे लिए, पर
0: जी,
1: आपको समझ नहीं, तो बता नहीं पाऊंगा समय। मैं बाप बता। हाँ,
0: तो कुछ बोलेंगे आप?
1: क्या हुआ बोला, आप बताओ। हाँ
0: अरे, यही कह रहे हैं कि जब हम सज धज जाते हैं, लोगों को सजा धजा देखते हैं, अच्छे से तैयार हुए देखते हैं, तो हमें कैसा लगता
1: अच्छा
0: है?
1: लगता है ना, कहीं जा रहे हैं सर जाएंगे तो। हाँ,
0: जी,
1: कहीं
0: तो
1: जा रहे हैं शादियों में, कहीं सरपंचियों में, अच्छा लगता है। हाँ
0: जी, तो वैसे भी घर में बहुत अच्छे साफ सुथरे और धुले धुलाए कपड़े और रोज धो के कपड़े पहनना
1: नहीं तो
0: चाहिए।
1: साफ सफाई तो अच्छे लगेंगे, कपड़े अच्छे पैरों अच्छे लगते हैं।

0: हमें जो 16 श्रृंगार हमारे बताए गए हैं वो क्यों जरूरी हैं?
1: अब ये तो देखिए, घर की जो महिलाएं रहती है 16 श्रृंगार के विषय में
0: जी,
1: वो बेहतर बता पाएंगे और उनमें किस तरह की भावना आती है, किस तरह की फीलिंग आती है।
0: तो आपके आपके घर में है कोई महिलाएं, बात कराइए हमें।
1: अभी तो नहीं, और मेरे ख्याल से जो हैं वो स्पष्ट रूप से आपको अपने विचार नहीं बता पाएंगी।
0: तो आप ही बता दीजिएगा, आप क्या फील करते हैं कि मतलब ये जो अपने जेवर है या गहने हैं ये पहनना चाहिए कि नहीं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, जो जेवरात होते हैं, जो गहने होते हैं, जो आभूषण जो पहनती हैं हमारी जो

कार्यक्रम का अंतिम नगमा गुलाम फिल्म से आवाजें, कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर का गीत और जतिन ललित का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, करियादंड हट्टा बालाघाट से हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा खान, अफिया खान, राव भाई, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यही कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे भी आप सुन सकेंगे। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, वक्त है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप और लाइव रेडियो

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

रहे हैं। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में समय 12:30 बजे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक सिसकियां की 7वीं कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

प्रस्तुत है धारावाहिक की सातवीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि फाता मुश्ताक के घर तलाक नामा भिजवाती है और मुश्ताक गुस्से में आकर तलाक नामे पर दस्तखत कर देता है। इधर फाता मुश्ताक का दस्तखत किया तलाक नामा दिखाकर पैसों के लिए सारे का दूसरा निकाह करवाने की तैयारी।

0: शुरू कर देती है। अब आगे
1: नूरी, नूरी मेरा सामान बांध, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ।
2: कहाँ जा रहे हो?
1: तुझसे जितना कहा उतना ही किया कर।
2: कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे ये तो बता दो।
1: बहस ना कर, तुझसे जितना कहा उतना ही कर, समझी?
2: अजीब आदमी हो तुम, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बता सकते।
1: शहर जा रहा हूँ, एक महीना लग जाएगा वापस आने में शहर से।
2: अच्छा, सामान में क्या क्या बांध दूँ?
1: नूरी नूरी, मुझे देर हो रही है, सामान बांध जल्दी से, चल।
2: बांधती हूँ।
1: और सुन, पहले एक कप चाय पिला।
2: ये लो चाय।
1: रख दे, मेरे सिर पे रखेगी क्या? और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल। ये चाय है, है? ये चाय बनाई है तूने, ये ले।
2: अब चाय में क्या खराबी थी?
1: चाय में क्या खराबी थी? हाँ, जा अपने अपने बाप से पूछ कि क्या खराबी थी। ऐसी घटिया चाय पिलाकर मारेगी मुझे?
2: देख देख रसूल, तू बात बात पर बाप का नाम ना लिया कर।
1: क्यों, बाप बहुत पसंद है तो यहाँ क्यों आई? वहीं रहती, मेरे सर मरने की क्या जरूरत थी तुझे?
2: रसूल बस करो, मैं बहस नहीं करती। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे बाप का नाम बीच में ना घसीटो।
1: जुबान लड़ाती है।
2: हाँ, औरत पर ही हाथ उठाएगा ना मर्द।
1: जुबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है।
2: अब अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा।
1: अच्छा, अरे तुम औरतों को जब तक मार ना पड़े तब तक अक्ल ठिकाने नहीं आती तुम्हारी।
2: ये क्यों नहीं कहते कि अपनी नामर्दी को छुपाने के लिए हम औरतों पर जुल्म करते हो?
1: नूरी नूरी, अपनी जुबान बंद कर, मुफ्त की खाती है तो तुझे चर्बी चढ़ गई है, हैं?
2: रसूल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा।
1: नूरी नूरी, तू औरत है, औरत के धर्म को मान, पति जो करे जैसा कहे उसे मान। अगर मैं तुझे अपने पैर की जूती बनाकर रखूं तो भी तुम्हें अपना धर्म समझकर मानना चाहिए।
2: तू अपने मर्द होने पर इतना इतरा क्यों रहा है? मैं जानती हूं तुझे बाहर से अंदर तक कि तू कितना मर्द है, और तेरे मर्द होने पर जो औरतों को अपनी जूती बनाकर रखना चाहता है, थूकती हूँ ऐसे मर्द पर।
1: अब समझ में आया कि मर्द कौन है और कैसा होता है, है?
2: तुम एक औरत को गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी जूती नहीं बनेगी। और अगर तुम मार पीट कर गाली गलौज कर उसे अपने वश में रखने की बात सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। औरत प्यार में बंद कर रह सकती है, गुलाम बनाकर औरत को नहीं रख सकते।
1: अच्छा, औरत हमेशा से मर्दों की गुलाम रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तू मेरी है, जैसे मैं तुम्हें रखता हूँ तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा, समझी?
2: अब ऐसा नहीं होगा। जब से तुम्हारे साथ हूँ तुमने मेरे साथ जुल्म ही किए हैं, लेकिन अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूंगी। अगर तुम्हें सलीके से रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग।
1: नूरी, मर्द के बिना औरत के बिसाथी क्या है? मैं हूं तो तू है, और मेरे बगैर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती, समझी?
2: तुम भूल कर रहे हो, अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ तो तुम्हारे जुल्म से नफरत भी कर सकती हूँ। अगर तुम अपने जुल्म को नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ।
1: चल चल, अपनी बेतुकी बातें छोड़ और घर का काम कर, चल। मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, मेरा बैग तैयार कर, चल, मुझे देर हो रही है।
2: मेरा फैसला भी सुनते जाओ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ।
1: क्या, तलाक?
2: हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म।
1: पागल हो गई है क्या?
2: ये मेरा फैसला है, तुम्हारे जुल्मों को अब मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ।

0: फाता फाता जरा सुनना।
1: कहो।
0: फाता, तुमने सारे के निकाह के लिए लड़का देखने को कहा था ना?
1: हाँ, कहा तो था। कोई नजर में है क्या?
0: अब है तो, मगर उसका एक तलाक हो चुका है। वैसे तुम जानती होंगी उसे।
1: कौन है?
0: अरे वही, अरे अपने रसूल मियाँ, अरे वही जो ड्राइवरी किया करता है।
1: अरे उस मुए का तो निकाह हो चुका था।
0: वाता, उसका निकाह नूरी से हुआ था और नूरी ने उसे तलाक दे दिया है। अगर अगर तुम कहो तो मैं रसूल मियाँ से बात करूं।
1: रसूल वैसे कमाता कितना होगा?
0: कमाता तो है, और सुना है जल्द ही अपनी मोटर कार लेने वाला है। सारे को रानी बना कर रखेगा पाता।
1: अच्छा, मैं आज ही रसूल से मिलती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। और हाँ, अब वो रसूल मियाँ से मिल जरूर लेना पाता। खुदा हाफिज़।
1: खुदा हाफिज़।

0: कौन है?
1: मैं हूँ फाता।
0: आओ आओ बैठो। मेरे तरफ कैसे आना हुआ?
1: मामिया, तुमसे जरूरी काम था, एक बात करनी थी तुमसे।
0: हाँ हाँ, कहो क्या बात है?
1: बुरा ना मानना, सुना है नूरी से तुम्हारा तलाक हो गया।
0: अरे नाम ना लो उस चुड़ैल का।
1: अरे अरे, तुम तो बुरा मान गए बेटा। मैं भी तो अच्छा, छोड़ो, एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो दूसरा निकाह करोगे?
0: अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पहले मुझे ढेरों पैसे कमाने हैं और जल्द ही मुझे एक मोटर कार भी लेनी है और फिर उसके बाद ही कुछ और सोचूंगा।
1: हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है। जिंदगी में पैसा कमाना तो बड़ी अच्छी बात है, खुदा तेरी मुराद जल्द ही पूरी करें।
0: फाता, आप किसी लड़की की बात कर रही थी?
1: हाँ, वो सारे को तो तुम देख ही रहे हो।
0: हाँ हाँ, पर उसका निकाह तो मुश्ताक से हुआ था।
1: हाँ, पर नसीब ही खराब था बेचारी का, निकाह के कुछ समय बाद मुश्ताक ने सारे को तलाक दे दिया।
0: क्यों?
1: अरे अब तुमसे क्या छिपाना, हमारी स्थिति तो तुम जानते ही हो। सारे के अब्बा ने चौकीदारी करते करते अपनी जिंदगी गुजार दी, अब हमारे पास देने को कुछ बचा ही क्या है कि उस मुश्ताक को देते। हमने कहा भी कि हमारे यहाँ ही आकर रहो, पर वह माना नहीं और सारे को तलाक दे दिया।
0: अब चिंता ना करो, अगर मुझसे कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: मेरी बात पर जरा गौर करना बेटा, सारे के बारे में सोचना, मैं फिर आऊंगी कभी, अभी चलती हूँ बेटा।
0: जी, सोचूंगा। खुदा हाफिज़।

0: मियां रसूल, ये फाता क्यों आई थी यहाँ पे?
1: अब बस यूं ही आई थी।
0: फाता यूं नहीं आ सकती मियां, जरूर कोई काम रहा होगा।
1: अरे वो अपनी बेटी सारे की बात कर रही थी।
0: सारे की बात?
1: हाँ।
0: अभी अभी तो उसका मुस्ताक से तलाक हुआ है, बड़ी अच्छी लड़की है वो।
1: तुम जानते हो उसे?
0: बहुत अच्छे से।
1: कैसी है?
0: देखोगे तो देखते रह जाऊंगा मियां।
1: अच्छा,
0: जन्नत की परी लगती है।
1: हाँ?
0: एक बार उसको देख ले। हाँ? उसके हुस्न के जादू से बच नहीं सकता मियां।
1: अच्छा, तो मैं सारे के लिए हाँ कर दूं?
0: अरे इसके लिए तुम्हें फाता को बस में करना होगा और उसे कुछ पैसे जरूर देने होंगे मियां।
1: अच्छा,
0: और वो तुम्हारे बस में हो जाएगी, वो खुश होगी तो बात आसानी से पढ़ सकती है।
1: फिर तो समझो मियां कि ये रिश्ता पक्का हुआ।
0: फिर तो मियां बात बन गई।

0: अरे अरे भाई फजी,
1: आ गए आप।
0: हाँ भाई, ले ये सामान रख लो। लो तो। हाँ भाई, वो मुश्ताक का बुखार उतरा या नहीं अभी?
1: नहीं, नींद में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। हा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे फजी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हकीम ने दवा दे दी है, उसे खिला दो। खुदा ने चाहा तो आज रात तक बुखार उतर जाएगा।
1: अजी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो।
0: अरे भाई, सोचता तो मैं भी हूँ, पर कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
1: सारे से तलाक क्या हुआ, बिस्तर पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा।
0: अरे आदमी तन के जख्मों को आसानी से झेल सकता है, लेकिन मन पर लगे जख्मों को भरने में वक्त लग जाता है। देखो फजी, सारे का जाना हमें बुरा लग रहा है, तो मुश्ताक की तो वो बीवी थी। मुश्ताक के लिए एक बुरा दौर, एक बड़ा इम्तिहान है ये। मुश्ताक कमजोर न पड़े, बस सब ठीक हो जाएगा।
1: अल्लाह मेरे बच्चे पर रहम कर, ठीक कर दे उसे। उसकी सलामती ही हमारी जिंदगी है परवरदिगार।
0: अरे फजी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा।
2: अरे करीम भाई, घर में है क्या?
0: कौन? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं घर में ही हूँ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई जान।
0: वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई अकरम, आओ आओ बैठ। हाँ भाई, कहो कैसे आना हुआ?
2: बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे थोड़ी मुलाकात कर लो।
0: ये तो आपने अच्छा किया। अरे भाई, मिलते जुलते रहने से अच्छा लगता है। अरे भाई फजी, चाय तो पिलाओ।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाय लाती हूँ।
0: हाँ भाई अकरम, और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है?
2: भाईजान, अल्लाह के रहमो करम से सब ठीक है। आप बताएं। सुना था मुश्ताक की तबीयत कुछ नासाज है, अब उसकी तबीयत कैसी है?
0: क्या बताऊं जनाब, जब से सारे से तलाक हुआ है, बिस्तर से उठा ही नहीं।
2: ओहो, किसी डॉक्टर को देखा?
0: हिम्मत हार गया हूँ अकरम, औलाद की तकलीफ बुजुर्गों की रही सही हड्डी तोड़ देती है। अब तो बस

0: ऊपर वाले पर ही भरोसा है, अब वही कुछ करे तो करे।
1: भाईजान, आदमी की नीयत बदल जाए तो वो सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी बुरा करता है।
0: मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं?
1: अरे वही फाता की।
0: फाता की?
1: क्या आपको पता नहीं है?
0: क्या?
1: साराय का दूसरा निकाह हो रहा है।
0: साराय का दूसरा निकाह?
1: हाँ।
0: किसके साथ?
1: अब रसूल मियां को तो आप जानते ही होंगे, और नहीं तो नाम तो जरूर सुना होगा।
0: रसूल से साराय का निकाह?
1: जी।
0: ये आप क्या कह रहे हैं? क्या फाता को मालूम नहीं कि रसूल एक नंबर का लफंगा आदमी है?
1: अजी मालूम क्यों नहीं है, पर लालच का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो कोई क्या करे। रसूल तो अब फाता को पैसे भी देता है, और इसी लालच में आकर फाता साराय का निकाह रसूल से कर रही है।
2: चाहे किसका निकाह हो रहा है?
0: अरे साराय का निकाह हो रहा है।
2: क्या साराय का निकाह? किसके साथ?
0: रसूल के साथ।
2: रसूल के साथ? तुम तो कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और उसका तो पहले भी निकाह हो चुका है।
0: अरे नूरी से निकाह हुआ था उसका।
1: लेकिन नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया, अब रसूल अकेला ही रहता है।
2: नूरी ने तलाक ले लिया?
1: हाँ, अब बेचारी और क्या करती।
2: सुना है भाई जान, नूरी भी बहुत बुरा बोलती थी।
1: अब नूरी कब तक जुल्म सहती उस हत्यारे का? एक नंबर का जालिम है रसूल। नूरी को हर बात पर पीटता था, आखिर कब तक बर्दाश्त करती बेचारी। एक दिन झगड़ा हुआ और नूरी ने रसूल से तलाक ले लिया।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: अच्छा ही हुआ कि नूरी ने उससे तलाक ले लिया, आखिर उसे सुखी क्या था। रसूल काम से शहर में महीने दो महीने बाहर रहता, और वहां शहर में कई औरतों से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। अरे वो तो शहर में मौज करता था, और नूरी यहाँ इंतजार करती थी। और जब शहर से घर लौटता तो नूरी को पूरे तरीके से पीटता था। नूरी ने बहुत बर्दाश्त किया, जानवरों की तरह पिटती थी बेचारी। अब बताते हुए भी जुबान कांपती है, अल्लाह माफ करे।
0: ठीक ही हुआ। अरे एक औरत अपना जमीर बचाए, ये अच्छी बात है। आखिर मर्दों के जुल्म कब तक सहेगी? उसकी अपनी जिंदगी है, आखिर उसे भी जीने का हक है। और अगर कोई उस पर जुल्म करे तो उसका जवाब औरत को देना ही चाहिए। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। अरे अरे ये तो औरतों की अपनी लड़ाई है, और नूरी ने इसकी शुरुआत की है।
2: अजी पर अब फाता तो उसी जालिम रसूल से साराय का निकाह कर रही है ना।
0: अरे लालच में आकर वो साराय की जिंदगी बर्बाद कर देगी।
1: लेकिन साराय की बर्बादी में मुश्ताक का भी हाथ है।
0: वो कैसे?
1: भाई जान ये भी फाता की चाल होगी। फाता चाहती है कि उसका दामाद उसे खूब पैसे दे, और मुश्ताक ऐसा नहीं कर पाया। उसने साराय से छुपाकर मुश्ताक से तलाक ले लिया, और अब उसकी शादी रसूल जैसे लफंगे से कर रही है ताकि वो उसे खूब पैसे दे।
0: अपनी खुशी के लिए फाता साराय की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी है।
2: फाता इतनी लालची और मतलबी होगी, ये हमने सोचा भी नहीं था। वो साराय के साथ ऐसा धोखा करेगी, अगर ये मालूम होता तो मुश्ताक साराय को कभी तलाक नहीं देता।
1: हाँ, ये तो धोखा हुआ है, पर अब कुछ किया भी तो नहीं जा सकता भाईजान।
0: अरे भाई हसन भट्ट से रोक सकते हैं।
1: फाता सुनती किसकी है? हसन भट्ट को गुलामों की तरह

0: रखती है, हमेशा उसकी बेइज्जती करती रहती है। और सारे तो तलाक के सदमे से बेहोश ही हो गई थी, अभी तो उबर भी नहीं पाई है बेचारी। ना जाने रसूल से अपने निकाह को कैसे सह पाएगी।
1: औरतों की जिंदगी ही ऐसी हो गई है भाईजान कि उसे दूसरों के किए फैसले पर चलना होता है। ना जाने अल्लाह ने औरतों के नसीब में क्या लिखा है, कहीं नफरत तो कहीं जुल्म सहती रहती है।
2: मायूस मत हो फजी, अल्लाह ताला सब देखता है, सभी के जुल्मों का हिसाब रखता है वो, और देखना एक दिन सारे जुल्मों का बदला लेता है।
1: अजी यकीन नहीं होता, जो ताकतवर है वो तो मजे से जुल्म करता है, और शराफत से जिंदगी बसर करने वाला जुल्म सहता है, यही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ना जाने कब बदलेगी ये तस्वीर।
0: अच्छा भाईजान, अब मैं चलूंगा, बहुत देर हो गई।
2: अच्छा, और सुनो भाई, मिलते जुलते रहना।
0: खुदा हाँ।
1: सुनो, हकीम जी के पास चले जाते, जरा दवा ले आते मुश्ताक।
2: ठीक है, अच्छा भी जाता हूँ। सुनो, वो पहले कप चाय पिला दो, बस मन जरा भारी हो गया है।
1: हाँ, पर हकीम जी के पास जरूर जाना और किसी अच्छे डॉक्टर का पता लगाओ, मुश्ताक की बीमारी अब देखी नहीं जाती।
2: पता करता हूँ, तुम जरा जल्दी से चाय पिला दो बस।
1: हाँ, अभी लाती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे ललित, कोयना, सुप्रिया, सतीश कक्कड़, नीलम, लोकेश और आनंद। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की सातवीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि हेमंत देवलेकर,
4: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
5: भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से 6 जून तक के लिए पोर्टल शुरू किया है। छात्रों को त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को मात्र 5 रुपये में स्थायी घरेलू कनेक्शन योजना में दिसंबर 2024 से अब तक 83,936 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिक जानकारी विद्युत वितरण केंद्र या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर प्राप्त की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जन्म जयंती पर आज भोपाल में शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने क्षेत्र के सभी स्नेहीजनों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में शामिल होने का आग्रह किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को हराकर पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी कर ली है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 40 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और ओले की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

से क्यों प्यार, विश्वास और खुशी को एक साथ समेटे हुए महिला सभा के इस अंक में आप सभी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आराधना का बड़े ही प्यार व स्नेह के साथ नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ सखियों, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। सखियों, कहते हैं यदि हमारे अंदर हौसला है तो हम विकट से विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परेशानियों से या कठिनाइयों से लड़ने का हौसला जो है वो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सखियों, यदि हम हौसला रखेंगे और उसे डगमगाने नहीं देंगे ना, तो ना सिर्फ हम उस कार्य में सफल होंगे बल्कि हम मंजिल तक के सफर को आसानी से मेहनत और ईमानदारी के बल पर हासिल कर लेंगे, पालेंगे, जीत लेंगे। इसलिए सखियों, बढ़िए मंजिल की तरफ और रखिए अपने मन में विश्वास इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सदियों खूबसूरत गीतों के साथ सूचना, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा और मनोरंजन यानी ये सभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो कि 1936 से अपनी स्थापना के साथ ही 90 वर्षों से भारत की आवाज बना हुआ है। पता है से क्यों? आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क में से एक है जो देश के 99% से अधिक आबादी तक 23 भाषाओं और 179 बोलियों में अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। साथ ही सखियों 90 वर्षों से अनवरत अपनी सेवाएं देने वाला आकाशवाणी कभी ट्रांजिस्टर तक ही सीमित था, लेकिन आज ये एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कर रहा है, जिसमें सभी प्रोग्राम आप घर बैठे या विदेश में कहीं भी सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं कार्यक्रमों से। तो सखियों 90 वर्षों के इस योगदान में सबसे बड़ी भूमिका है आप सभी के साथ की, यानी आप सभी श्रोताओं की। तो फिर सुनते रहिए भारत की आवाज आकाशवाणी। और सखियों इस जानकारी के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2008 में शुरू की गई प्रतिभा किरण योजना के विषय में। सखियों इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना व आर्थिक सहायता प्रदान करना। सखियों इस योजना में पात्रता की यदि बात करें तो पात्र छात्रा को शहर की निवासी होना चाहिए, उसे बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए, साथ ही कक्षा 12वीं में कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। सखियों इस योजना से मिलने वाली सहायता में सामान्य स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष 5000 और मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 7,500 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। तो सखियों इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या आवेदन करने के लिए आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति पोर्टल पर जा सकते हैं और पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सखियों इस जानकारी के बाद अब वक्त है क्रम मेरी उड़ान का, पहचान का, कुछ कर दिखाने का। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान। सखियों वर्तमान परिवेश पर यदि नजर डालें तो नारी का संघर्ष, उसकी सफलता की कहानी, कहीं उसकी आगे बढ़ने की चाहत पर तो कहीं कुछ महिलाओं की घर परिवार की जरूरतों को मद्देनजर रखकर बनी होती है। यानी आज की नारी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऊंची सोच और लक्ष्य से हर उस मंजिल को छू रही है जो सिर्फ हमारे लिए कभी सपना हुआ करता था। हाँ, इस राह में कई मुश्किलें और मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन आज की नारी अपने हौसले से हर बाधा को पार कर आगे बढ़ रही है। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक सफल, सशक्त और कुछ हटकर व्यवसाय को अपनाने वाली सखी अर्पणा जैन से। अर्पणा जी जो एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं, तो चलिए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो अर्पणा जी स्वागत है आपका हमारे इस क्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो अर्पणा जी सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे और कहां से आपने इस कार्य की शुरुआत की, यानी आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ?
1: एक्चुअल में मेरे इस सफर की शुरुआत शादी के बाद और बेटे के जन्म के बाद हुई। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी जिससे मेरी एजुकेशन का सदुपयोग हो और साथ ही समाज के लिए मैं कुछ उपयोगी कर सकूं, ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है अर्पणा जी। तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की और कौन सी डिग्री लेना इसके लिए जरूरी होता है?
1: वैसे तो मैंने फिजिक्स में MSc किया है, BEd हूँ और डी फार्मा भी है। देखा जाए तो मेरे पास टीचिंग का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैरियर का ऑप्शन था, पर चूंकि मुझे कुछ अलग सा

0: करना था जिसमें मेडिकल स्टोर खोलने का ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना जरूरी होता है और साथ ही फार्मेसी स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन और ड्रग सेलिंग का लाइसेंस भी होना चाहिए।
1: तो अर्पणा जी, जब आपने मेडिकल स्टोर खोलने का जो निर्णय लिया, सभी के बीच में आपने जब अपनी बात रखी, तब आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिला? और सपोर्ट यदि मिल गया तो इस दौरान कौन कौन सी आपके बीच में परेशानियां आई?
0: क्योंकि हमारे देश में मेडिकल स्टोर जनरली देखा है कि पुरुष ही चलाते हैं।
1: हाँ, ये पुरुषों का व्यवसाय है।
0: हाँ जी हाँ, तो पुरुष ही चलाते हैं। तो एक महिला होने के नाते मेडिकल स्टोर खोलना और चलाना एक्चुअल में टफ वर्क है।
1: बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारी महिलाएं करती हैं और लड़कियां करती हैं, लेकिन वो खोलने से थोड़ा हिचकती हैं।
0: तो कि आपको हर तरह के व्यक्ति को उसमें डील करना पड़ता है। तो इन सब में मेरे परिवार, स्पेशली पति का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो ये काम संभव ही नहीं था, क्योंकि एक तो ये बहुत ही जिम्मेदारी और अलर्टनेस का जो है। आज का समय ऐसा है, रोज रिसर्च हो रहा है, तो रोज नित नई तरह की बीमारियों के बारे में हम सुन रहे हैं, तो नित नई दवाइयां आ रही हैं उनके लिए, और उन सबको अवेलेबल कराना, किस जगह किस एरिया में उपलब्ध है, कहाँ नहीं है, उन सबको उपलब्ध कराना, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, साथ ही जीएसटी के बाद सारा ये बिलिंग का काम, जीएसटी, तो ये सब बिजनेस के उतार चढ़ाव, इस सब में मेरे पति ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया।
1: अपना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। अच्छा अर्पणा जी, ये बताइए कि क्या कभी किसी व्यक्ति या महिला के पास में कोई आपके पास में आई दुकान पर दवाई खरीदने, तो उस टाइम दवाई खरीदने के उसके पास में पैसे नहीं है मान लीजिए, तो उसको जरूरत है, तो ऐसे में आप क्या करती हैं?
0: जनरली तो देखा गया है कि दवा खरीदने वाला आया हुआ व्यक्ति जो आता है वो अब पैसे लिए हुए हो, पर कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें या तो दवा में ही अमाउंट कम कर देते हैं, उन्हें छूट दे देते हैं, और यदि बिल्कुल भी ना हो तो जरूरत की दवा उन्हें फ्री में ही दे देते हैं।
1: यानी कमजोर व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो आप उनको फ्री में भी कई बार दवा दे देते हैं,
0: जी,
1: है ना? बहुत अच्छी बात है ये तो अर्पणा जी। अच्छा ये बताइए कि क्या इस व्यवसाय में, आप जो व्यवसाय कर रही हैं, इसमें उधार भी लिया दिया जाता है, बाद में आप उन पर चुकाने आते हैं लोग?
0: जी जी, जैसे ये बिजनेस है, मेडिकल स्टोर का बिजनेस है, इस बिजनेस की एक खासियत है, यहाँ बिजनेस में अन्य तरह के जो बिजनेस होते हैं उनमें आप माल खरीदते हैं और फिर आप बेचते हैं, फिर आपका पैसा वापस आता है, लेकिन ये इन सभी बिजनेस के अपोजिट होता है। इसमें माल उधार पर आता है और कुछ समय के लिमिट के बाद उसको चुकाना होता है, और लेकिन दवा बिकती नकद में है। तो इसमें चूंकि मेडिसिन के रेट काफी बढ़ते रह रहे हैं, आप अभी समय देख रहे हैं इसमें काफी रेट में इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पूरा अमाउंट लिए नहीं होता है, तो हमें उधार भी देना होता है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है,
1: ये सबसे बड़ी बात है।
0: तो एक आध मामले को आप यदि छोड़ दें तो उधार लेने वाले व्यक्ति लेकिन समय के साथ कोशिश करते हैं कि वो अपना उधार चुका देते हैं।
1: बिल्कुल अर्पणा जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि व्यक्ति की जान सबसे ज्यादा कीमती है, है ना? अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: मेरा तो अपनी सभी सहेलियों से, सखियों से यही कहना है कि आज के इस महंगाई के युग में जहाँ कोई काम हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है और किसी महिला का कैरियर, यानी कहना चाहिए कि सफल कैरियर, यदि वो उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है, तो साथ ही उनके पीछे आने वाली जो महिलाएं हैं वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती हैं।
1: बिल्कुल, कुछ ना कुछ सीखती हैं।
0: तो वो जो है काम करने वाली महिला है वो तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनती है, उसका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, लेकिन उनके पीछे पूरी एक महिलाओं की लाइन आ रही होती है, सफल वर्किंग वुमेन रोल मॉडल होती है और उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। तो महिलाओं को कहना चाहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक आर्थिक रूप से कामयाब महिला कई और महिलाओं की प्रेरणा बन जाती है और उन्हें आगे बढ़ाने में प्रेरणा भी देती है। तो हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे करियर हल्का भी थोड़ा हो, लेकिन हमें उसको सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत, पूरी लगन और निष्ठा से काम करना चाहिए।
1: बिल्कुल, यानी छोटे छोटे स्टेप लेकर आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और आप उस काम में सफल होंगे। और आपने हमारी सखियों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सखियों, ये तो

और सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब चलते हैं खूबसूरती की ओर। सखियों, खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मेकअप के छोटे छोटे राज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारा मेकअप ही आपको खूबसूरत बनाएगा या फिर दिखाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो चलिए सखियों, आज आपको बताते हैं कि सौंदर्य के छोटे छोटे उपायों से भी आप अपने व्यक्तित्व को बना सकती हैं आकर्षक और खूबसूरत। जैसे कि सखियों, रोज रोज लिपस्टिक से बचने के लिए आप गहरे रंग की लिपस्टिक के बजाय होंठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक का प्रयोग करें। इससे होंठों पर हल्की चमक व तरावट बनी रहती है और साथ ही हल्का गुलाबी रंग होंठों के कुदरती रंग को भी बरकरार रखता है। होंठों के बाद अब बात यदि आंखों की करें सखियों, तो यदि आप आंखों के मेकअप से कतराती हैं और नहीं करना चाहती हैं और बेवजह आई शेडो, आईलाइनर या फिर काजल का प्रयोग भी नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसे में आंखों को सिर्फ मस्कारे की थोड़ी मोटी परत पलकों पर लगाएं। ये पलकों को इतना आकर्षक बना देती है कि इसके साथ आपको अन्य कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्यों, नमी रहित त्वचा से चेहरा बेजान और अस्वस्थ यानी बेरंग बेनूर नजर आता है, इसलिए बेरंग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए मॉइस्चराइजर में हल्का शिमर मिलाएं। इससे आपकी त्वचा जो है वो दमकती नजर आएगी। तो सखियों, ये तो थे मेकअप के छोटे छोटे से राज, जिनको आजमा कर देखें आप भी मेकअप करते समय। और अब कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं इस गीत के साथ।

गीत के बाद अब सखियों चलते हैं अपनी रसोई में। सखियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम फलों के राजा आम का चल रहा है, आम जो कि बाजार में कई सारी वैरायटियों में इस समय उपलब्ध है, तो चलिए आज रसीले आमों से ही बनाते हैं अपनी रसोई में एक बहुत ही आसान और यम्मी टेस्ट वाला ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। सखियों, दो लोगों के लिए मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए आपको चाहिए सामग्री: ताजा दही 500 ग्राम, आम 2 नग, पिसी हुई चीनी स्वादानुसार, साथ ही चाहिए आपको इलायची पाउडर, बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन, केसर और थोड़ा सा गुलाब जल। और अब इसे बनाते कैसे हैं, तो नोट कीजिए सखियों इसे बनाने की विधि। सखियों, सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में डालकर 3 घंटे के लिए टांग दें, ताकि उसका जो पानी है वो सारा पानी निकल जाए। अब एक आम का पल्प बना लें और दूसरे को बारीक टुकड़ों में काट लें। इसके बाद अब एक बड़े बाउल में विस्कर की मदद से दही को अच्छी तरह से फेंट लें, जब तक कि वह एकदम क्रीमी ना हो जाए। फिर उसमें पिसी हुई चीनी और आम का पल्प डालकर 5 मिनट तक और फेंटें। अब इसमें कटे हुए आम, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ता की कतरन और साथ ही भीगी हुई केसर और थोड़ा सा गुलाब जल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। और अब तैयार श्रीखंड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें। तो लीजिए, तैयार है सर्व करने के लिए स्वादिष्ट ठंडा ठंडा मैंगो श्रीखंड। और अब सखियों, आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत के साथ ठंडे ठंडे मैंगो श्रीखंड का।

और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं अज्ञात विज्ञापनों से रहें सावधान। यानी सखियों, उन लुभावने, झूठे या बिना पहचान वाले विज्ञापनों से सतर्क रहें जो हम उपभोक्ताओं को ठगने या गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सखियों, धोखाधड़ी से बचने के लिए विज्ञापनों की सत्यता को परखना बेहद जरूरी है। यानी कुछ सावधानियां बरतना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि अतिशयोक्ति से बचें, यानी अगर कोई विज्ञापन बहुत ही शानदार लग रहा है तो उस पर आसानी से विश्वास बिल्कुल भी न करें, बल्कि किसी भी सामान को सखियों खरीदने से पहले कंपनी के आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही सखियों, उस विज्ञापन से संबंधित निष्पक्ष रिव्यूज और रेटिंग्स की भी जांच करें। वहीं लुभावने विज्ञापनों के पॉपअप पर अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी भी दर्ज न करें। लेकिन हाँ सखियों, भारत सरकार के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर जाकर विज्ञापनों से संबंधित नियमों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के तरीकों के बारे में जागरूक अवश्य रहें। तो सखियों, ये तो थी छोटी सी जानकारी अज्ञात विज्ञापनों से सावधान रहने की। और अब सखियों, हमारे मिलने का समय बस यहीं तक। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। और अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति आराधना जैन को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: रहे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे नारायण सिंह सिसोदिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।
1: ओ सैया मारी।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आप सुन रहे ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार।

0: केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे परीक्षित पर निर्कर के गाए गीत।

0: परीक्षित पर्निरकर के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में दादा फिल्म से, महेंद्र दहलवी का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुमन कल्याणपुर का ही गाया हुआ फरीब फिल्म का ये गीत। असद भोपाली के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के युवाओं को उच्च शिक्षा और नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरिणखेड़े तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1,872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को

0: इतना ही, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का

0: नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2000

0: 2 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनकेंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा हमने लिया है क्रांति फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। संतोष आनंद का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है ग्राम महेश्वाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न खाड़े, वाल्मीक खाड़े, नीनाजी खाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

महबूब की मेहंदी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की बोल है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का ये नगमा।

अगली फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, कंवर कॉलोनी बड़भा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। आप सबने पसंद किया है चमत्कार फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने, आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

नूरी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को जान निसार अख्तर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा ने।

गीत की अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर ने जिसे आवाज दी है, संतोष आनंद का गीत और आनंद मिलिंद का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, किशोरी बोस, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों की प्रगति से ही देश का समग्र विकास संभव है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना अपनी समृद्ध संस्कृति गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने स्वामित्व योजना के तहत पट्टाधारियों को संपत्ति के पंजीकृत दस्तावेज देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 48 लाख पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपर्क

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रद्धा और आज लेकर आई हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपसे ढेर सारी दिलचस्प बातें करने वाले हैं और उसके साथ ही आपके साथ साझा करेंगे ढेर सारी जानकारी भी। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले चलिए हम पूछ लेते हैं आपसे आज के कार्यक्रम के दो प्रश्न। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का पहला प्रश्न है, आपने वेबसाइट तो यूज की ही होगी, तो उन वेबसाइट्स में अक्सर आपने URL और www जरूर देखा होगा। तो आज का पहला प्रश्न यही है कि वेबसाइट में जो URL और www होते हैं उनका फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ कर रखिए और कार्यक्रम के अंत में दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आज है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। दोस्तों, हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन इस राज्य की कहानी सिर्फ प्रशासनिक बदलाव की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये संघर्ष, संस्कृति और पहचान की कहानी भी है। तेलंगाना का इतिहास बहुत पुराना है और गौरवशाली भी रहा है। इस क्षेत्र पर सातवाहन, काकतीय, बहमनी और कुतुबशाही जैसे कई राजवंशों ने शासन किया है। विशेष रूप से काकतीय वंश ने यहाँ कला, स्थापत्य और सिंचाई व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। दोस्तों, वारंगल का प्रसिद्ध किला और हजार स्तंभ मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र हैदराबाद राज्य का हिस्सा था, फिर 1956 में इसका विलय आंध्र प्रदेश में कर दिया गया। लेकिन समय के साथ लोगों को लगा कि उनकी भाषा, संस्कृति और विकास की ज़रूरतों को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है। इसके बाद दशकों तक आंदोलन चला और अंततः 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। दोस्तों, तेलंगाना की संस्कृति भारत की सबसे समृद्ध और रंगीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तेलुगु है, लेकिन उर्दू भी व्यापक रूप से बोली जाती है। हैदराबाद की गलियों में आपको तेलुगु, उर्दू और हिंदी का सुंदर मिश्रण देखने को मिल जाता है। और अगर लोक कलाओं की बात करें तो तेलंगाना का लोक संगीत लोगों के जीवन, खेती, मौसम और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पारंपरिक लोकगीत गांव की आत्मा माने जाते हैं। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले बथुकम्मा गीत विशेष रूप से यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। लोक नृत्यों की बात करें तो पेरिनी शिव तांडवम सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर। और दोस्तों, तेलंगाना के त्यौहार इसकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बथुकम्मा यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्यौहार है। ये फूलों का त्यौहार है जिसमें महिलाएं विभिन्न प्रकार के फूलों से सुंदर आकृतियाँ बनाती है और गीत गाती है और उत्सव मनाती है। बोनालू भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो देवी महाकाली को समर्पित है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली, ईद और संक्रांति भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं यहाँ। अब अगर हम बात करें तेलंगाना के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की तो सबसे पहले नाम आता है हैदराबाद का। यहाँ स्थित चार मीनार दुनिया भर में तेलंगाना की पहचान है। गोलकोंडा किला अपनी अद्भुत वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है और सालार जंग संग्रहालय में दुनिया भर की दुर्लभ कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, वारंगल का किला और हजार स्तंभ मंदिर इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। रामप्पा मंदिर, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल भी, उसका दर्जा भी मिला है, अपनी शानदार काकतीय वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेमियों के लिए बोगाथा जलप्रपात, कुंतला जलप्रपात और नागार्जुन सागर बांध आकर्षण के केंद्र है। यहीं यादाद्री मंदिर और भद्रचलम मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। और दोस्तों, अगर तेलंगाना की बात हो और खाने की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हैदराबादी बिरयानी का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा हलीम डबल का मीठा, खुबानी का मीठा, उस्मानिया बिस्किट और ईरानी चाय यहाँ के लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल है। और दोस्तों,
तेलंगाना सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, कृषि, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद आज भारत के प्रमुख आईटी और स्टार्टअप हब्स में से एक है। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस केवल एक राज्य के निर्माण का उत्सव नहीं बल्कि उस भूमि की पहचान है जिसने संघर्ष और उसकी संस्कृति और उसकी उपलब्धियों का उत्सव है, जिसने अपनी अलग पहचान बनाकर पूरे देश में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

आज एक और खास दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 2 जून है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में तारीख एक ऐसे कलाकार की याद दिलाती है जिसने भारतीय फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के ग्रेटेस्ट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को। दोस्तों, राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और फिल्मों के बड़े कलाकार थे। घर में अभिनय का माहौल था, लेकिन राज कपूर का सफर उतना आसान नहीं था।

जितना लोग सोचते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे से की थी। स्टूडियो में क्लैपर बॉय का काम किया, छोटे छोटे तकनीकी काम सीखे, सेट पर घंटों बिताए। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बनना चाहते थे, वे सिनेमा को असल में समझना चाहते थे दोस्तों, और इसीलिए शायद वो इतना आगे तक बढ़ पाए। और इसी चीज़ ने ना उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग बना दिया। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्टूडियो शुरू किया, आरके स्टूडियो। सोचिए, जिस उम्र में आज कई लोग अपने करियर की दिशा तय कर रहे होते हैं, उस उम्र में राज कपूर अपना फिल्म स्टूडियो चला रहे थे। और 1948 में उनकी पहली निर्देशित फिल्म आ गई। फिल्म ने ध्यान तो खींचा, लेकिन असली सफलता मिली बरसात से। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। इसके बाद आई आवारा। दोस्तों, अगर आज किसी भारतीय फिल्म को दुनिया भर में पहचाना जाता है तो उसकी नींव रखने वालों में राज कपूर का नाम सबसे ऊपर आता है। आवारा हूँ ये गीत सिर्फ भारत में नहीं बल्कि रूस, चीन और कई देशों में गाया गया। लाखों लोग ऐसे थे जिन्हें भारत के बारे में तो बहुत कम पता था, लेकिन वो लोग राज कपूर को ज़रूर जानते थे। उनके किरदार आम आदमी के किरदार थे, फटे कपड़े पहनने वाला, संघर्ष करने वाला, सपने देखने वाला इंसान, और लोग खुद को उनमें देखते थे। और यही कारण था कि उन्हें भारत का चार्ली चैपलिन भी कहा गया। और दोस्तों, राज कपूर की फिल्मों की बात हो और नरगिस का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी उस दौर की सबसे लोकप्रिय जोड़ी बन गई। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, इन फिल्मों ने इतिहास रच दिया। प्यार हुआ, इकरार हुआ, रमैया वस्तावैया, मेरा जूता है जापानी जैसे गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन राज कपूर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक शानदार निर्माता और निर्देशक भी थे। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ समाज की सच्चाइयां भी दिखाई देती थी। गरीबी और अमीरी का अंतर, मानवता, प्रेम, संघर्ष, सपने, ये सब उनकी फिल्मों की पहचान बन गए। 1950 और 60 का दशक आते आते राज कपूर सिर्फ एक स्टार नहीं रह गए थे, वे एक संस्था बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, हर सफलता की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। राज कपूर की जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। एक फिल्म उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा कर लेकर गई और एक फिल्म ऐसी आई जिसने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से झकझोर दिया। कौन सी थी वो फिल्म और कैसे उनकी सबसे बड़ी वापसी हुई, ये हम इस गीत के बाद सुनेंगे।

दोस्तों, अभी अभी हमने बात की थी कि कैसे राज कपूर एक युवा कलाकार से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। लेकिन अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। 1964 में उन्होंने बनाई फिल्म संगम। ये फिल्म बड़ी हिट रही और राज कपूर की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी सपना शुरू किया जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में उन्हें लगभग 6 साल लग गए। उन्होंने अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा, सब कुछ इस फिल्म में लगा दिया। उन्हें विश्वास था कि ये उनकी सबसे महान फिल्म साबित होगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई। राज कपूर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वे कर्जे में डूब गए। उनके लिए ये सिर्फ एक फिल्म की असफलता नहीं थी, ये उनके दिल के बेहद करीब का सपना था जो टूट गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे बड़ी वापसी की कहानी। 1973 में उन्होंने एक नई कहानी, नए कलाकारों और नई सोच के साथ फिल्म बनाई, बॉबी। और दोस्तों, बॉबी ने इतिहास रच दिया। फिल्म सुपरहिट हुई, राज कपूर फिर से शिखर पर पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई। इन फिल्मों में उन्होंने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि समाज, प्रेम और परंपरा और रिश्तों पर भी अपनी बात रखी। दोस्तों, अगर उनके परिवार की बात करें तो राज कपूर की पत्नी का नाम कृष्णा कपूर था और उनके 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, रीमा कपूर और ऋतु नंदा। आज कपूर परिवार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रसिद्ध परिवार माना जाता है। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर जैसे सितारे हैं, वो उन्हीं के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, राज कपूर ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते, उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1988 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन शायद नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। 1988 में जब वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लेने समारोह में पहुंचे तब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे देश की निगाहें उनकी सेहत पर थी। लेकिन 2 जून 1998 को भारतीय सिनेमा का ये महान सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी उम्र थी 63 वर्ष। दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो एक युग बनाते हैं। राज कपूर ऐसे ही कलाकार थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी, उन्होंने सपने दिखाए, उन्होंने हंसाया, उन्होंने रुलाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आम आदमी को अपनी फिल्मों का नायक बनाया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हीं की फिल्म का एक मशहूर गीत उसकी भावना के साथ हम विदा लेते हैं जिसका नाम है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।

दोस्तों अब बारी है आज के खास सेगमेंट हमारे शहर की, जहां हम हर बार किसी एक शहर की कहानी, उसकी संस्कृति और उसके लोगों की, उसके पहचान के बारे में हम बातचीत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की जिसका नाम आपने शायद रेलवे टिकट पर, ट्रेन के अनाउंसमेंट में या फिर किसी सफर के दौरान जरूर सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ कटनी की। अगर मैं आपसे पूछूं कि कटनी किस लिए प्रसिद्ध है, तो शायद आप सबसे पहले कहेंगे कि वही बड़ा रेलवे स्टेशन। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। कटनी देश के महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाली रेल लाइनें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों कटनी की पहचान सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। कटनी मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड तीनों संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ की भाषा, खान पान, पहनावा और परंपराओं में एक खूबसूरत विविधता दिखाई देती है। इतिहास की बात करें तो कटनी को पहले मुडवारा के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र प्राचीन काल से व्यापार और आवागमन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बाद में खनिज संपदा और रेलवे के विकास ने इसे एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर बना दिया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कटनी को मार्बल सिटी भी कहा जाता है? जी हाँ, यहाँ बड़े पैमाने पर संगमरमर यानी मार्बल का उत्पादन होता है। कटनी का मार्बल देश के कई राज्यों और विदेशों तक भी पहुंचता है। इसके अलावा चूना पत्थर और अन्य खनिज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दोस्तों अब अगर बात करें यहाँ की भाषा की, तो कटनी में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, लेकिन गांवों और आसपास के क्षेत्रों में आपको बघेली, बुंदेली और स्थानीय बोलियों की मिठास भी सुनने को मिलेगी। यही भाषा

विविधता यहाँ की सांस्कृतिक खूबसूरती होती है। और दोस्तों, जहाँ संस्कृति है वहाँ संगीत और नृत्य भी होते हैं। कटनी के आसपास के क्षेत्रों में करमा, सैला और रीना जैसे लोक नृत्य बेहद लोकप्रिय है। त्योहारों और मेलों में ढोल और मादल की थाप पर जब ये नृत्य होते हैं ना, तो पूरा माहौल जीवंत उठता है। लोकगीतों में खेती, मौसम, प्रेम, परिवार और प्रकृति की झलक देखने को मिलती है। आज भी ग्रामीण इलाकों में लोक गायक अपनी पारंपरिक शैली में इन गीतों को जीवित रखे हुए हैं। और यही वजह है कि कटनी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मेल बलकर सामने आता है। तो दोस्तों, कटनी के बारे में हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कटनी की, तो अब बात करते हैं उसकी जगहों की जो इस शहर को और भी ज़्यादा ख़ास बनाती है। अगर आप इतिहास और धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो कटनी आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है। सबसे पहले नाम आता है रूपनाथ धाम का। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ सम्राट अशोक के

शिलालेख पाए गए हैं जो भारत के प्राचीन इतिहास की झलक दिखाते हैं। इसके बाद आता है तिगवा मंदिर समूह। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हम कई सौ साल पीछे चले गए हो। कटनी जिले का विजय राघवगढ़ किला भी इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस क्षेत्र का स्वतंत्रता आंदोलन और स्थानीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा बहोरी वन क्षेत्र में स्थित प्राचीन जैन प्रतिमाएं और मंदिर भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर हम धार्मिक महत्व की बात करें तो कटनी में हिंदू, जैन, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग वर्षों से साथ रहते आए हैं और यही वजह है कि यहाँ धार्मिक सद्भाव और विविधता की खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है। त्योहारों में यहाँ पर होली, दीपावली, दशहरा और नवरात्रि बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान पूरे शहर में माता के पंडाल सजते हैं, गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और होली के समय ग्रामीण इलाकों में लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों की विशेष धूम रहती है। दीपावली पर पूरा शहर रोशनी में जगमगा उठता है, जबकि दशहरे पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। यही नहीं, ईद और क्रिसमस पर भी यहाँ पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ ये त्यौहार मनाए जाते हैं। यानी अगर एक शब्द में कहूँ तो कटनी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विविधता और सामुदायिक एकता। तो चलिए इसके बाद हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और गीत के बाद हम कटनी के बारे में और भी कुछ ज़रूरी जानकारियों के बारे में बातचीत करेंगे।

दोस्तों अब समय है कटनी के उस पहलू को जानने का जो किसी शहर के विकास की असली तस्वीर दिखाता है, यानी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और लोगों का जीवन। कटनी जिले की आबादी लगभग 13 लाख के आसपास है और साक्षरता दर करीब 72% है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। कटनी के क्षेत्र में यहाँ सरकारी और निजी स्कूलों की अच्छी संख्या मौजूद है। उच्च शिक्षा के लिए कई महाविद्यालय संचालित है जहाँ कला, विज्ञान

वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है। हालांकि मेडिकल, इंजीनियरिंग और विशेष तकनीकी शिक्षा के लिए कई छात्र पास के शहर जबलपुर का रुख करते हैं, जो मध्य प्रदेश का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र भी माना जाता है। अब अगर हम बात करें रोजगार की, तो कटनी की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिकाव है। पहला है कृषि, दूसरा रेलवे, तीसरा खनन और चौथा छोटे उद्योग। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती आज भी लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है। वहीं मार्बल, चूना पत्थर और अन्य खनिजों से जुड़े उद्योग हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। रेलवे भी इस शहर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे से जुड़े कार्यों में हिस्सा लेते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई निजी अस्पताल यहाँ मौजूद हैं। गंभीर चिकित्सा सुविधाओं के लिए जबलपुर का मेडिकल नेटवर्क भी नज़दीक होने का लाभ लोगों को मिल जाता है। कुछ शहर अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध होते हैं दोस्तों, तो कुछ अपने बड़े मॉल्स के लिए, लेकिन कटनी की खूबसूरती उसकी सादगी में है। और दोस्तों, कटनी की सबसे खास बात क्या है पता है आपको? ये शहर ना बहुत तेज नहीं भागता, लेकिन कभी रुकता भी नहीं है। रेलवे की सीटी, खदानों की हलचल, गांवों की सादगी, मंदिरों की घंटियां और लोकगीतों की मिठास, सब मिलकर कटनी को एक ऐसा शहर बनाते हैं जो आधुनिक भी है और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ भी है। तो अगर अगली बार आपकी ट्रेन कटनी के स्टेशन पर रुके, तो सिर्फ खिड़की से मत देखिएगा, याद रखिएगा उस प्लेटफॉर्म के पीछे एक पूरा शहर है जिसकी आपने कहानी अभी अभी सुनी है। इस शहर की खुद की एक कहानी है, खुद की संस्कृति है और अपनी पहचान है। इसी के साथ हमारे शहर में आज हम कटनी के बारे में इतनी ही बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों अब वक्त है उस घड़ी का जिसका इंतजार उन सभी लोगों को होगा जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में दो प्रश्न सुने और उनके उत्तर तैयार रखे होंगे। तो चलिए उन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके साथ साझा करती हूँ। आज का पहला प्रश्न था कि वेबसाइट में URL और www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, जिसका उत्तर है मैरी क्यूरी, जिन्हें रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च करने के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1903 में। लेकिन जानकारी की बात यह है दोस्तों कि 1911 में उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये ऐसी महिला थी दोस्तों जो पहली महिला थी जिन्हें किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम इनकी रिसर्च के बारे में बात करें तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है कि कुछ खास तत्वों से निकलने वाले अपने आप पैदा होने वाली एनर्जी। और उन्होंने ये साबित भी किया कि कोई भी ऊर्जा होती है वो रासायनिक बदलाव से नहीं बल्कि सीधे परमाणु यानी कि एटम के अंदर से निकलती है, और इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी और साथ ही आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ जल्द ही मिलेंगे दोबारा अगले कार्यक्रम में। उसी के लिए तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज़ में ये गीत था फिल्म संघर्ष से। संगीत दिया था जतिन ललित ने और शब्द रचना थी समीर की।

श्रोताओं, ये गीत था फिल्म जहर अ लव स्टोरी से। आवाज़ थी श्रेया घोषाल की, संगीत दिया था रूप कुमार राठौर ने और गीत के बोल लिखे थे सईद कादरी ने। आइए सुने ये अगला गीत।

श्रोताओं, शान और सुनिधि की आवाज़ में ये गीत, क्षमा कीजिए, शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत था फिल्म जय हो से। इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल, ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन तथ्य कुछ और है
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है
2: जी। तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए?
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है
2: जी। श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
3: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी
2: जी।
3: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
3: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
2: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं, कि जहां पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
3: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
2: जी,
3: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
2: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
3: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
2: जी।
3: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
2: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
3: जी।
2: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
3: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
2: जी,
3: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
2: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
2: जी।
3: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
2: बिल्कुल।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
2: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
3: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
2: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
4: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
5: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
4: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो, ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में

0: बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा।
5: हाँ,
4: इंजेक्शन लगा दूं?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी। हाँ।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
6: सर, सर ये टेलीग्राम।
5: अच्छा, लाओ दिखाओ।

0: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
0: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
2: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
4: मेरा बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बबच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी

0: एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो की गाई कुछ गज़लें। आइए सुने ये पहली गज़ल, कलाम है फैज़ अनवर का।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो के गाए पॉप सॉन्ग्स। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत में आइए सुनते हैं कालूराम बामनिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

0: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे कालूराम बामनिया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग

0: कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 7:20 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कृषि उत्पादन के लिए बैंकों का योगदान। इस विषय पर डॉक्टर धनंजय कुमार से भेंटवार्ता और साथ ही आप सुनेंगे अलिनो की स्थिति में सोयाबीन फसल की खेती में सावधानियां। इस विषय पर डॉक्टर वी यू दुपारे की वार्ता। रात 8 बजे आप सुनेंगे दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम। रात 9:15 पर होगा कार्यक्रम चित्रगीत। उर्दू कार्यक्रम कहकशा आप सुनेंगे रात 9:30 पर हमारे भोपाल केंद्र से। रात 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन, राग होगा जय जयवंती। ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी देते हमारे कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। चिंतन का समय है 6:30। 6:35 पर होंगी खेती की बातें। श्री रामचरितमानस गान होगा 6:40 पर। 7:20 पर होगा कार्यक्रम आपका पत्र। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। लोक संगीत में 9:00 और 6:45 पर आप सुनेंगे मानसिंह भोंदिया और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत में 9:15 पर और 6:30 पर आप सुनेंगे अभिजीत के गाए कुछ गीत। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे 9:30 पर और 10:30 पर अभिषेक व्यास का गिटार वादन। सुबह होगा राग बैरागी और रात को होगा राग पूरी।

रात 10 बजे, क्षमा कीजिए, सुबह 10 बजे होगी जिले की चिट्ठी। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन आप सुनेंगे सवेरे 10:05 पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये होगा सुबह 11 बजे हमारे भोपाल केंद्र से। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से और 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। शाम की सभा में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम को 5:45 पर। शाम 6 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT में उमंग। शाम 7:20 पर होगा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रगीत। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे कल हम आपको सुनवाएंगे नाटक खामोश सच, प्रस्तुत करता है राकेश जोशी। ये थे हमारे कल के मुख्य कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी, स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरबाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मैं मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जाँच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
2: केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख एक जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त, जो रजिस्ट्रिया प्राप्त होनी है, उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
0: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरगी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सके। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उर्दू अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादें बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें फिल्मकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित त्रिशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अनीनों का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2,312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कब

चिमनी, हाथी, हिरण और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर कलेक्टर ने ग्राम लूनाहेड़ा और बूढ़ा में प्राचीन बावड़ियों का निरीक्षण किया, जिन्हें जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगर मालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों और के स्मिता की राम राम। भाई बहनों और अपन अपना कार्यक्रम में आज बात कर रहा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की और इन्हीं योजना को उद्देश्य कई है या योजना कई करे है आज अपन इक्कीस बातचीत में जानांगा और इको लाभ कैसे ली सके ये सोचांगा। भाई बहनों और यह योजना भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय योजना है और इको मुख्य उद्देश्य खेत से लीके खुदरा दुकानना तक एक आधुनिक और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को निर्माण करनो है जिससे कृषि उपज की बर्बादी कम होए और साथेज किसान जो है उनकी उपज को उचित मूल्य ली सके है। या प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों जो रेवे उनको निर्यात के बढ़ावे साथ ग्रामीण क्षेत्र ना में रोजगार का अवसर भी पैदा करे और किसान ना की आय में वृद्धि करनो इको सबसे खास उद्देश्य है। वे बनो इन्हीं योजना में कोल्ड स्टोरेज मेगा फूड पार्क और खाद्य प्रसंस्करण इका इना जैसा सुविधा ना का लागत लगाना का सारू परियोजना लागत पे 35% से लेके 50% की सब्सिडी भी सरकार देवे है। किसान ना की भलाई अन कृषि अवसंरचना के मजबूत करना का सारू भी सरकार ने इन्हीं योजना के शुरू करियो है। तो भाई बहनों और इन्हीं योजना को लाभ लेना का सारू हमारे हमारी ग्राम पंचायत या फिर हम कृषि महाविद्यालय कृषि अनुसंधान केंद्र जो भी हमारा कणे रहे हुए हम जाई के वहाँ पे इकी जानकारी ली सका हैं और इको लाभ उठाई सका हैं। अब अपन अपना कार्यक्रम में बात तो और भी नरी करांगा। अभी सुना सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत।

0: भाई बहनों, हमने सीमा मिश्रा को गायो, यो लोकगीत सुनियो। अब हमने देखियो कि 1 जून से लेके 30 जून तक खेत बचाओ अभियान यू चली रियो है। कहीं हमने कभी सोचियो कि ये हमारे क्यों चल रहा? हाँ भाई बहनों, हमारी सरकार जो है हमारी धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाना का सारू खेत बचाओ अभियान चल रही है और अब हमारे इना अभियान के आंदोलन में बदलना है। आज हमारे संकल्प लेनो है कि धरती हमारी माँ है, मिट्टी संरक्षण के जन आंदोलन हमारे बनानो है। धरती माता की सेहत बचाना की जिम्मेदारी हम सबकी है। बिना सोचे समझे खाद अण कीटनाशक ना को प्रयोग मिट्टी की उर्वरता के कम करे है। इससे मिट्टी का लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हुई जावे, साथ ही खेती की लागत भी बढ़ी जावे और इका सारू हर किसान ने सॉयल हेल्थ कार्ड जो होए उसके आधार पर जरूरत का अनुसार ही उर्वरक ना के संतुलित उपयोग करना चाहिए। भाई बहनों, और 1 से 30 जून तक चलने वालों यो खेत बचाओ अभियान जो है इका में कृषि वैज्ञानिक अण विशेषज्ञ गांव गांव में जाएगा, साथ ज भी किसान ना के मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती, आधुनिक बुवाई की जो तकनीक ना रहे वे भी और जल संरक्षण इनका सबे तरीका सिखावेगा, जिससे कि खेती जो है वो टिकाऊ बनी सके और हमारी जो मिट्टी है और हमारी धरती जो है, हमारी माँ का सामान जो है, उसकी उर्वरा शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होवे। तो भाई बहनों, और क्यों इन अभियान के हम 1 महीना का सारू सोचा? हमने एक संकल्प ऐसो लेनो चाहिए कि हम कभी भी, चाहे वो 1 जून से 30 जून कहीं होए, इका आगे भी हमारे ख्याल रखना है कि इके हमारे धरती के अपनी माँ का सामान मानी के और उके जीनी भी चीज़ से हानि होवे या फिर उक पे जो भी खाद को प्रयोग करा, कीटनाशक को प्रयोग करा, उका में हम ख्याल रखांगा कि कोई भी नुकसान हमारी धरती माँ के नहीं होए। तो या तो हुई गई खेत बचाओ अभियान की बात। अब कृषि उत्पाद का सारू बैंक ना जो है वो भी नरा सारा योगदान उनको रहवे है एक में, है नहीं? कहीं ना कहीं हमारे इस बैंक ना से फ़ायदो मिले या फिर ये मान लो कि मदद मिले है, जिससे कि हमारी कृषि उत्पाद है उका में हम लाभ कमा सका। हाँ, और ऐसी आज एक वार्ता है हमारा पास जो कि डॉक्टर धनंजय कुमार जो चेयरमैन है ग्रामीण बैंक से। तो चलो आज जाना कि कृषि उत्पाद का सारू बैंक ना को कई योगदान है।
1: श्रद्धेय किसान भाइयों, बहनों एवं मजदूरों, आज मैं आप लोगों के बीच कृषि उत्पाद में बैंकों का योगदान पर चर्चा करने जा रहा हूं। किसी भी अर्थव्यवस्था में, खासकर कृषि उत्पाद में, बैंकों का योगदान

योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक उपकरणों के लिए सुलभ ऋण व फसल ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ये फसल बीमा, भंडारण और कृषि व्यवस्था स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देकर किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। बैंक मुद्रा बाजार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में आर्थिक विकास, खासकर खेती के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यही कारण है कि सरकार कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंकों की महत्ता को समझते हुए सन 1969 में 10 बैंकों का तथा पुनः 1980 में 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पुनः 2019 में बैंकों को और सशक्त बनाने के लिए कई बैंकों को आपस में मर्ज किया और अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा 28 क्षेत्रीय बैंक, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तथा सहकारी बैंक कृषि उत्पाद को बढ़ावा तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। सही मायने में 1969 के पहले अपने देश में बैंकों की बहुत कम शाखाएं कार्यरत थी और उनका कारोबार भी बहुत सीमित था, लेकिन आज देश में बैंकों का जाल फैला है। शहरों में हर नुक्कड़ पर बैंक की कोई न कोई शाखा उपलब्ध है, जबकि गांव में कमोबेश हर 5 किलोमीटर पर बैंक को कोई न कोई एक शाखा है। आज बैंक आपके दरवाजे खड़ी है, आप जब चाहें और यहां तक कि घर बैठे सभी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। सन 1969 के पहले गांव में गरीब किसान व मजदूर अपनी आर्थिक तंगी के कारण गांव के ही साहूकारों से काफी ऊंचे ब्याज दर पर पैसा लेकर वे हमेशा के लिए आर्थिक गुलामी में फंस जाते थे। उन्हें कर्ज में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। कुछ लोग पूंजी के अलावा अभाव में बेरोजगार ही रह जाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ही लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना है। आज प्राथमिकता के आधार पर बैंकों से किसान एवं मजदूरों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर महिलाओं को बैंक से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञात हो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कमोबेश 58 करोड़ खाता खोले गए हैं, जिसमें 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। कृषि उत्पाद को गति देने में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के कुल निर्यात में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत भी काफी अधिक है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। आज भी देश के लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद खेती के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैंकों से लोन देने का निर्देश दिया। कृषि को प्रायोरिटी सेक्टर के प्रथम खंड में रखा गया। बैंकों का कुल ऋण का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में और उसमें भी कुल प्रायोरिटी सेक्टर का 18% खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराना जरूरी माना गया। इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने पर बैंकों को जुर्माना भी भरना पड़ता है। राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ग्रामीण बैंक से खेती के लिए दी जाने वाली प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार है। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल ऋण यानी खाद, बीज, बिजली, पानी, मजदूरी आदि के लिए एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। इस लिमिट के साथ किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है और वे अपनी जरूरत के अनुसार पैसों का आहरण कर उपयोग में लाते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिमिट 3 लाख रुपए तक ब्याज सबवेंशन के साथ 2 से 4% प्रभावी ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रहे, 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही साथ जिसका खाता ठीक ठाक चलता है उसका लिमिट 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अब सरकार ब्याज सबवेंशन के लिए लिमिट 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कर दी है, जिससे मत्स्य पालन और पशुपालन भी शामिल है। गोल्ड किसान क्रेडिट कार्ड, खेती के लिए मियादी ऋण हेतु किसानों को गोल्ड किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इससे किसान अपना कृषि यंत्र, मोटर पंप सेट आदि खरीद सकते हैं।
गोल्ड

0: किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट किसान की जरूरत के अनुसार 50,000 रुपये से 50 लाख रुपये तक का हो सकता है, जिसमें 3 लाख रुपये तक के लिमिट में कोई प्रोसेस फी नहीं लगता। कृषि उपज संग्रहण ऋण, इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके उपज के संग्रहण और उसे सुरक्षित रखने के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत गोदाम एवं शीतगृह भी बनाया जा सकता है। किसान समृद्धि ऋण, बड़े किसानों को कृषि फर्मों के लिए ऋण की सीमा 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की हो सकती है, जो खेती के लागत पर आधारित होती है। भूमि खरीद के लिए ऋण, छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक जमीन के मूल्य का 85% तक का ऋण बैंकों से दे सकती है। एग्रीकल्चर क्लिनिक योजना, इसके अंतर्गत सरकारी बैंकों द्वारा किसी एक व्यक्ति को 20 लाख रुपये तक तथा 5 प्रशिक्षित व्यक्तियों को समूह परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, किसानों को उनके गहनों के विरुद्ध भी सस्ते ब्याज दर पर 2 से 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है। SBI में इसका लिमिट 25 लाख रुपये तक है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 50 लाख रुपए तक की व्यवस्था है। स्टेट परचेज स्कीम, इसके अंतर्गत टी गार्डन या बगीचे आदि के खरीद के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों से दिया जा सकता है। किसान तत्काल योजना, किसानों को खाद, बीज, सिंचाई या छोटे कृषि उपकरणों के लिए तत्काल खर्चों के लिए बैंकों से 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों के लिए ऋण, कृषि पर आधारित छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए बैंकों से 50,000 रुपये से 20 लाख रुपये तक का लोन, कोलेटरल फ्री लोन दी जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास के लिए बैंकों के पास अनेक योजनाएं हैं। गांव के आर्थिक विकास के लिए बैंकों की अहम भूमिका है। बैंक आप लोगों के लिए खेती और अन्य रोजगार खड़ा करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर एवं आसान शर्तों पर न केवल लोन उपलब्ध करा रही है, बल्कि आपके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था भी कराती है। ATM के माध्यम से 24x7 यानी सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे के लिए बैंकिंग सेवा आपके लिए उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि आप बैंक से जुड़कर बैंक के अधिकांश योजनाओं का लाभ उठाएंगे और आप अपना आर्थिक विकास करेंगे, तभी हमारा देश उन्नति करेगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। धन्यवाद।
1: आप जानियो कि कृषि उत्पाद का सारूप बैंक ना कई कई योजना ना उनकी है, कई योगदान देवे है, कैसे ऋण लेवा सका और काय काय का सारू हमारे ऋण मिले है, तो हम कितना सारा ऐसा काम है जो कि बिना पैसा के कम पैसा के नहीं करी सका, तो इका सारू हमारे कदी ये सब पतो चली गयो, तो हम जाइके और बैंक ना हमें पतो करी सका कि भाई हमारे कोई काम करना है, खेती की जमीन लेनी है और कहीं बागवानी का सारू लेनी है, कोई भी काम करना है, कोई खेती जिका में हमारे पैसा कम पड़ रहा है, तो हम कैसे हम उनका ऋण लेना है, तो इसकी हमारे जानकारी दिया था डॉक्टर धनंजय कुमार। अब अपन अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावा, पर अब तुम्हारे इंतजार होएगो कि आज हमारे यहाँ अनाज मंडी में कई भाव रिया, क्योंकि अनाज का भाव ना जो रहेगा उसके हिसाब से तुम कल तैयारी करी सकोगा। भाई बहनों, और कृषि उपज मंडी समिति सहयोगितागंज प्रांगण इंदौर में जो हमारा भावरिया है उनका द्वारा दिया गया भाव में हमारे पास आइया है, तो चलो जाना। सोयाबीन की आवकरी 7779 क्विंटल और भावरियो 2715 से 7190 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की आवकरी 253 क्विंटल, भावरियो 4000 रुपया से 7350 रुपया प्रति क्विंटल। अमचूर की आवकरी 112 क्विंटल, भावरियो 5820 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा की आवकरी 5500 क्विंटल, राजमा की आवक रही 6 क्विंटल, भाव रियो 5,500 रुपया से 5,800 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची की आवक रही 117 क्विंटल, भाव रियो 8,510 रुपया से 22,290 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं की आवक रही 2,008 क्विंटल और भाव रियो 2,010 रुपया से 4,300 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 2,396 क्विंटल, भाव रियो 6,000 रुपया से 8,800 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का की आवक रही 4 क्विंटल और भाव रियो 2,043 रुपया प्रति क्विंटल। मटर की आवक रही 15 क्विंटल, भाव रियो 1,895 रुपया से 3,600 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक रही 125 क्विंटल और भाव रियो 4,145 रुपया से 7,300 रुपया प्रति क्विंटल। इमली की आवक रही 91 क्विंटल और भाव रियो 3,000 रुपया से 11,000 रुपया प्रति क्विंटल। धनिया की आवक रही 3 क्विंटल, भाव रियो 12,300 रुपया से 12,800 रुपया प्रति क्विंटल। तुवर की आवक रही 3 क्विंटल और भाव रियो 3,500 रुपया से 6,595 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों की आवक रही 2 क्विंटल, भाव रियो 5,150 रुपया से 6,410 रुपया प्रति क्विंटल। उड़द की आवक रही 1 क्विंटल और भाव रियो 7,045 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहनों, और ये तो था कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण द्वारा भेजा गया भाव अनाज का। अब इका साथे ज अपना कार्यक्रम के अपन आगे बढ़ावा और अपनो मनोरंजन भी करता चला और सुना राम अवतार अखंड अन्नमंडली को गायो यो गीत।

0: हमने राम अवतार अखंड अन्न मंडली को गायो यो राम भजन सुनियो। अब भई वातावरण तो पूरो राममय हुई है, पर देखो प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं अपनो रूप दिखाती रहे है। भई कहीं ना कहीं ये मानी लो कि इका मध्यस्थ हम जहाँ हमने जैसो काम कहीं करिया है कि जीका से प्रकृति जो है वो अपनों कई बार विकराल रूप दिखाए, तो कई बार वो बता ही रही है कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर ही रहा हो। जैसे कि हम जो पर्यावरण के चोट पहुँचाई रहा हाँ, उनके नुकसान पहुँचाई रहा हाँ, उका से भी इतना हमारे समझ नहीं पड़े, पर हमारे प्रकृति वो ख्याल करावे है। जदेस तो हम देख ही रहे हाँ कि कभी भी एकदम जो है वर्षा हो जाए, नहीं तो कभी घनी घाम पड़े है, घनी गर्मी होवे है, कभी सूखो पड़े है, तो कभी बारिश नहीं होवे, तो कभी सर्दी ज़्यादा लगे है। नहीं जहाँ बारिश पड़नो चाहिए वहाँ नहीं पड़ी रही है, जहाँ सूखो पड़तो होएगा वहाँ बारिश नहीं पड़ी रही है, बाढ़ आई रही है, और जहाँ पे बाढ़ आवे आती थी वहाँ पे सूखो पड़ी रही है। यो सब जो है खेल प्रकृति को है, और इका में कहीं ना कहीं हम इका गुनाहगार हैं। चलो भाई बहनों, और आज अपन एक वार्ता का जरिए जाना कि अलनीनो, अलनीनो जो है वह भी एक ऐसी प्रकृति की स्थिति है। तो आज अपन जानेंगे अलनीनो की स्थिति में सोयाबीन फसल की खेती में कई सावधानी ना रखनी चाहिए। यह हमारे आज बता दिया है डॉक्टर बी यू दुपारे, प्रधान कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से।
1: आकाशवाणी इंदौर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर बी यू दुपारे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता हूं, और विगत 25 वर्षों से आप सभी सोयाबीन किसानों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। हमारे संस्थान द्वारा सोयाबीन के ऊपर अनुसंधान किया जाता है, नई नई तकनीकी का विकास किया जाता है, चाहे उसमें सोयाबीन की नवीनतम किस्में हो या कीट या रोग प्रबंधन करने के तरीके हो, या जैसे सूखा या जल भराव जैसे स्थिति से निपटने के लिए कुछ ऐसे पद्धतियां हो या तरीके हो, उसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। और ये हमारा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है, संपूर्ण देश भर में सोयाबीन की फसल पर ही एक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और इसके माध्यम से 1967 से लेके अब तक जब सोयाबीन हमारे देश में कोई जानता नहीं था, तब से प्रचार प्रसार का काम किया गया है। 1970-71 में जब सोयाबीन की खेती हमारे देश में शुरुआत हुई, 30,000 हेक्टर के आसपास पूरे देश भर में हमारा एरिया था, लेकिन ये ऐसी फसल हमने देखी कि बहुत ही कम समय में ही इसका फैलाव पूरे देश भर में हो गया। और अगर देखा जाए तो पिछले 50 वर्षों में 130 लाख हेक्टर के आसपास हमारा सोयाबीन का क्षेत्रफल रहा है। अब जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती करने वाले कई सारे जिले हैं। इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे 100% सोयाबीन की खेती होती है, और हमारे सोयाबीन किसानों ने इनकी उत्पादकता भी अच्छी हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक प्रति हेक्टर उत्पादन का प्रश्न है, तो हम ये पाते हैं कि 10 क्विंटल प्रति हेक्टर हमारे सोयाबीन का उत्पादन इस वर्ष या पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, और ये स्थिरता बनी हुई है, उससे थोड़ा सा आगे नहीं जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन की फसल पर कीट या रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, साथ ही साथ कुछ नए बीमारियां आ रही हैं, और चूंकि सोयाबीन एक खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसल है तो खरपतवार की मुख्य समस्या रहती है। और पिछले कुछ वर्षों से अगर मैं सही बात करूं तो पिछले एक दशक से ऐसी स्थितियां बनती जा रही है कि सूखे की घटनाएं निरंतर देखी जा रही है। कई बार ये हो जाता है कि सही समय पे मानसून में आ गया, लेकिन बोनी हो जाने के बाद में बारिश गायब हो जाती है या बीच में कभी गायब हो जाती है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जब हमको बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती, और जब हमको बारिश नहीं चाहिए तभी बारिश होती है। पिछले कुछ वर्षों में ये मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि कटाई के समय पे जब हमको बारिश की आवश्यकता नहीं होती तब लगातार बारिश गिरती जा रही है। तो विपरीत मौसम की स्थितियां हमें लगातार देखने को मिल रही है, और इससे निपटने के लिए हम किसानों के खेतों पे लगातार प्रदर्शनों का आयोजन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। इंदौर के आसपास एक मेमदी नाम का गांव है जो कि सिमरोल के पास में है, और वहां पे हमने एक आदर्श ग्राम के रूप में उसको विकसित किया है। कई प्रकार के परीक्षण हमने आयोजित किए हैं, और वो ये बताते हैं कि अगर सही तकनीक अपनाया जाए तो हम अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने ऐसी किस्मों का विकास किया है जो कि कम समय में पकते हैं। ऐसी स्थितियां जो होती है उसमें हम देखते हैं कि किसान लोग तो जागरूक है ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग तकनीकी का अगर अपनाएं तो जो औसत उत्पादन है उसको भी हम अच्छी तरह से हम ले सकते हैं। अब साथियों, जैसे कि आपने समाचार माध्यमों से, प्रचार माध्यमों से सुना होगा कि इस वर्ष अल नीनो की स्थिति देखी जाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और मौसम विभाग ने भी अपना पूर्व अनुमान बताते हुए कहा है कि इस साल अल नीनो की स्थिति देखी जाएगी। अब ये अल नीनो की स्थिति होने के कारण क्या होगा कि सूखे की स्थिति निरंतर जो बनी रहने की संभावना अधिक है, और ये जब सूखे की घटनाएं होती है तब हम ये देखते हैं कि हमारा जो फसल का उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित हो ही जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम क्या उपाय योजना अपना सकते हैं? तो किसान भाइयों, आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अल नीनो की स्थिति में हमें सबसे ज्यादा यह प्रयास करना चाहिए किस्मों के चयन के बारे में। ऐसी किस्मों को अपनाएं जो कि कम समय में पकती हो, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर पकने वाली किस्में, या अधिक से अधिक मध्यम समय वाली पकने वाली किस्मों को हम अपना सकते हैं। अब ऐसी कौन सी किस्में हैं? तो साथियों, NRC 150 नाम की एक किस्म है, 90 दिन में पक जाती है। JS की 2303 किस्म है, 2309 है। JS की ही एक 2212 है, JS की 2216 है, JS की 2433 है। ऐसी कई किस्में हैं जिसका कि बीज आपके पास में किसानों के बीच में उपलब्ध है,

0: उनमें से किसी एक वैरायटी को आप लगा सकते हैं, ये इसमें 90 दिन के अंदर पक जाएगी, यानी कि सूखे की स्थिति में भी ये अपना उत्पादन देने में सक्षम है। या अगर हम चाहे तो 100 दिन तक के पकने वाली किस्म भी हम ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी किस्में हमारे पास में उपलब्ध है, JS की 2172 या NRC की 142। तो ये किस्में, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कम समय में पकने वाली किस्में को आप लगाएं। दूसरी बात, एक ही वैरायटी की खेती नहीं करें, 2 से 3 किस्मों का आप लगाएं। और हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग सूखे की स्थिति में भूसे की पलवार लगाना ना भूलें, और जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई के साधन है उसको जरूर अपनाएं। ये कुछ तरीके हैं जिसमें कि अल नीनो की स्थिति से निपटने के लिए हम उपाय योजना कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के साथ में पुनः एक बार आपके साथ में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी को खरीफ के मौसम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: भाई बहनों, हमने डॉक्टर बी.यू. दुपारे, प्रधान कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से, इनसे जानियो कि अलनिनो की स्थिति में सोयाबीन फसल की खेती में कई सावधानी न रखनी चाहिए। अब इका साथ हमारे घड़ी भी इशारों कर रही है कि तम से अनुमति लेने की बखत आई गई है। तुम्हारे दो अनुमति, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकारे प्रीति उपासनी का नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी हर पल कुछ नया सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जो हर हाल में आगे बढ़ते हैं, मंजिल उन्हीं के कदम चूम जाती है।

श्रोताओं, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव लेकर आता है। कभी यह खुशियों की सौगात देती है तो कभी चुनौतियों के रूप में हमें मजबूत बनाती है। ज़िंदगी का हर पल हमें कुछ नया सिखाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

जिंदगी एक ऐसा मंच है जहाँ हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई संघर्ष की कहानी लिख रहा है तो कोई सफलता की मिसाल बन रहा है। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कठिनाइयों से भरे होते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं।

जिंदगी की राहों में मुस्कुराते रहिए, गम आए तो भी कदम बढ़ाते रहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी एक दिन, बस हौसलों की लौ जलाते रहिए। जिंदगी एक किताब जैसी है, हर पल उसका एक नया पन्ना पलटता है, कभी खुशियों की स्याही तो कभी गमों की दास्तान लिखा होता है।

जिंदगी की उलझनों और रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम इस तरह उलझे हैं कि खुद के लिए अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। पर इसी भागदौड़ में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो सीधे रूह में उतर जाता है। ऐसे लम्हे ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं जब हमदम साथ हो और मोहब्बत की बात हो। ज़िंदगी की हकीकत में बस एक फसाना है, जो खोया नहीं अब तक बस उसे ही पाना है।

दोस्तों, मोहब्बत तो हर पल धड़कनों का हिस्सा होती है। ज़िंदगी में मोहब्बत हो तो हर पल खुशनुमा होता है। मोहब्बत हर किसी के किस्मत में नहीं होती, जिसे मिल जाए वो खुश नसीब होता है। ऐसी मोहब्बत जो बहुत ख़ास हो और दिल को छू ले, वो एहसास अक्सर मुकद्दर से मिलता है। हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। कह दो तो यादें हैं, जी लो तो ज़िंदगी है।

ज़िंदगी एक नदी की तरह है जो बिना रुके निरंतर बहती रहती है। इसके रास्ते में कभी शांत किनारे आते हैं तो कभी तेज़ धाराएं, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जो गिरकर फिर संभल जाए असल में वही अजेय है। आहिस्ता चल ऐ ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज निभाने बाकी हैं।

ज़िंदगी हमें सिखाती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ज़िंदगी की खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि उस सफ़र में है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। ज़िंदगी छोटी है, हर पल मुस्कुरा लो। जो साथ है उन्हें दिल से अपना लो।

श्रोताओं, जिंदगी एक अनमोल उपहार है। यह हमें हर दिन नया अवसर देती है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का और खुद को बेहतर बनाने का। कभी सफलता हमें खुशी देती है तो कभी असफलता हमें अनुभव देती है, और यही अनुभव हमारी जिंदगी को सार्थक बनाते हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।

चार दिन है ज़िंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। इसी के साथ दिल ने फरियाद किया कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रीति उपासनी को नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार संध्या, तत्पश्चात 9 बजे न्यूज़ एट 9 हम दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में

0: अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject.
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

0: कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के दो वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज वाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म संगम से। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था फिल्म तलाश से। संगीत से सजाया था एसडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में उर्दू कार्यक्रम कहकशा हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, पालदा नाका इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली ने। इसी गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत और हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत था फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। संगीत दिया था राजेश रोशन ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा था जिला कोल्हापुर से तुषार कुरने, प्रसिक कामले, एकता कामले, मेघना कुरने, उत्कर्षा कामले, अरुण वड़गुड़कर और इनके परिवार के सभी सदस्य। पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे ने, जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने।

हीरालाल बडोले, तेज सिंह डावर, साहिल हरिओम, विशाल सुमन, रमा कंचन और भावना ने, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल ने।

से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने, बाजार चौक ग्राम दीवार से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े ने, जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र वाघे, झवर, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे ने, जलगांव से डॉक्टर नामदेव, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विनी, वैष्णवी जगदाड़े, हर्षुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव, गौरव लोखंडे और इनके परिवार के सभी सदस्य, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन ने इस गीत के लिए अनुरोध किया था। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है सनी, आवाज़ लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा है उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर ने, बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद रजिया, जुनैद अलीना, नसरीन जहां, आयत और माज। इसी गीत के लिए अनुरोध किया है रंथभवर जिला शाजापुर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, शबाना बानो, मोरिस खान, अकबर हसन भाई, मुकेश नारोलिया, दिया नारोलिया और दिलरुबा ने, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आइए सुने इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज़ में ये गीत था फिल्म होटल से। संगीत दिया था उषा खन्ना ने और गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने। इस गीत को सुनना चाहा था खंड

अभी आपने सुना सनी फिल्म से ये गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इसी के साथ मन भावन कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। प्रीति उपासनी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन राग।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना सुभाष देशपांडे का वायलिन पर बजाया राग जय जयवंती। तबला संगत थी गांधार राजहंस की। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 11 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में

0: समाचार तत्पश्चात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जायेगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।